कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अब इस सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जुलाई महीने का शनिवार दिन और तारीख है 18। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतः और तकनीकी अभियंता ताना तुम। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी। सात बज के 10 मिनट सुनिए आपताने दैलिक न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:45 सुनिए तागिन दैलिक न्यूज। 7:40 पेश है सदाबहार म्यूजिक, सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। आठ बजे सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। 8:40 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। नौ बजे फिर से हिंदी न्यूज।

0: 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी कपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 MHz से अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देव भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया।

फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। सुनिए और खुद को इस खूबसूरत माहौल में खो जाइए।

दोस्तों ये था भक्ति गीत। आशा करती हूँ कि आपको आज का भक्ति गीत में आपको सुकून मिला होगा। यह आकाशवाणी चैनल करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कालो पाशा में समाचार।

600 passenger em galadula train Hyderabad ga jin lokka Sonipat lobe indobe motu jekla development aba em India lo gari gura aba em direct ok sustainable pollution kama dobe monam lagabe hydrogen telen train molen nam e railway sector lok rirap choching nagobari lendu India ga Rafael fighter aircraft ok C-7 transport aircraft Australia lo Royal Australian Air Force Air Combat Exercise Pitch Black 2026 lagabe halik tu jogo India ga Air Force ga de hepta aum ga ba kabi country lo ka Air Force Army ga dem training ribam du la nimang momin jinam terika am chennam lagabe ok des ka bu amne professional relation am purdi monam lagabe relit ta du Arunachal Cabinet Minister ga dem maro team Arunachal ga de ga CM Kandu ga leadership aralo 10 years am repin kunam lagaba resolution go pass to CM Kandu ga leadership aralo Arunachal am infrastructure development badu bada school medical network ok airport abalo alba state ga plan palendu ala mendula joka resolution aralo state ga healthcare facility am purdi monam lagaba CM care initiative mission suraksha drugs ok dignalane aba am ripagnam lagaba ok ayushman arogya sibir स्टेट अरालो प्री मेडिकल कैंप रिगनाम लगाबे इनिशिएटिव एमरो मोलेंतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 गजिदी कुनम री एग्जामिनेशन रिजल्ट एमरो जिलेंतु कु जो के एग्जामिनेशन लो 20 लाख निदम कैंडिडेट एग्जाम एम जिदी तब 5440 एग्जाम सेंटर लो 551 इंडिया का सिटीज ओक फॉरेन मोकोलो एग्जाम एम जितेबे हालत तु जो के एग्जामिनेशन लो 11 लेक्स एम निगबेन याने गो स्टूडेंट गद अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल आयुष ओके कभी कभी प्रोग्राम लो क्वालिफाइड टू ओके नारु कैंडिडेट्स गद गे स्कोर कार्ड एम ऑफिशियल वेबसाइट लो जिलेन टू एला एनटीए एम इनकेन जितु नवाड ग 45 फाउंडेशन दे आलो एमरो तवांग डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल लो लोदुंग गतु लोदुम आलो लो नवाड ग न्यू चैंपियन आरा लोक दोलुरिग मे रिकिनम एम आइन मुरको पिमो पामो दुला गुमिन रगो दुगो लगाब डेवलपमेंट रिनाम एन कातम तु ओक एक पेर मा की नाम अभियान आरालो स्टार अनिस अनाम जुन आवम सेल्फ हेल्प ग्रुप गादम लोदुम आलोलो जिलेतु लोदुम आलोलो तवांग दिसि नमियल अंगमोम स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आरालो ए के वाई सी लगाब रिव्यू मीटिंग गो दुल गतु दुकुम आलोलो डिस्ट्रिक्ट पुत एंड सिविल सप्लाइज निगम ओक पेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर गद दुल गदुला ई के वाई सी रिमाने बेनिफिशरीज गद्दम हप्ता आरा लो बरलेन मोनाम लगाबे दिसे निको मुमेंटु तनेगत नुन मेंके नागम आकाशवाणी इतानेग लोके तपादु इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश एम ऑरेंज अलर्ट गो कातम दुला पपुम परे अंजो लोहित पके केसंग लोअर सिवनश्री तवांग ओके वेस्ट कमिंग ओके इस कमिंग मोकोलो 24 hours aralo dohum dorak nido kode a chiru bar de du elementu kurunkume ok papum pare em red alert bu katem dula mokolo 120 to 200 cm lo ba nido kode a chiru ba lo nigo ba hode du elementu badminton lo kale nigo ba olympics lo gold medal pane india ga pv sindhu japan open 2026 badminton lo maro semi final lo chalak tu सेमी फाइनल लो वर्ल्ड नंबर 10 पीवी सिंधु मु वर्ल्ड लोकल नंबर 4 चाइना का चेन यूपी ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेशियम लो जिलो ने पे काम जीता दू कहता ने का दे जीरो का गुनु का गालो मिंकेन आगो में एगा

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कालू भाषा में समाचार या आकाशवाणी टनर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और मैं हूं आपकी अपने दोस्त और होस्ट आरजे याजू। तो दोस्तों सुबह की नई किरण के साथ वक्त हो चुका है एक नए सफर पर निकलने का, एक ऐसा सफर जो आपके दिन को बेहतरीन, आपके शरीर को ऊर्जावान और आपके मन को बिल्कुल शांत बनाएगा। जी हाँ, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका सबसे पसंदीदा और हर दिन का साथी प्रोग्राम सुबह सवेरे। आज की इस बागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ ढूंढ लेते हैं, पैसा, कामयाबी, दोस्तों के लिए वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। पर अब और नहीं, अगले कुछ मिनट हम और आप मिलकर बात करेंगे वेलनेस की, लाइफस्टाइल की और कुछ ऐसे सिंपल आदतों की जो आपको रखेंगी हमेशा फिट और हिट। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और एनर्जेटिक गाने के साथ। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और मिलते हैं ठीक इसके बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं हूं आपके अपने आरजे और होस्ट ही आजू। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अक्सर हमारी बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है। हम लोग वही पुराने ट्रेडिशनल योगा आसनास के बारे में तो रोज सुनते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग और मजेदार बात करेंगे। क्या आपने कभी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में सुना है? ये होते हैं सटल माइक्रो एक्सरसाइजेस। सुबह बिस्तर से उठते ही सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने फिंगर जॉइंट्स, रिस्ट और एंकल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। ये आपकी जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड को एक्टिवेट करता है, जिससे दिन भर जॉइंट्स में दर्द या स्टिफनेस नहीं होती। और हाँ, जो लोग दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल पर रहते हैं, उनके लिए एक क्विक टिप आई योगा। अपनी आंखों को बिना गर्दन हिलाए ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट घुमाइए। ये आपकी आई मसल्स को इंस्टेंट रिलीफ देता है। चलिए इस माइंड रिफ्रेशिंग टिप के बाद सुनते हैं एक और सुपरहिट गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना शो सुबह सवेरे। योगा सिर्फ मैट पर बैठकर आसन करने का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ब्रीदिंग तकनीक की जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। इसे कहते हैं शीताली प्राणायाम या कूलिंग ब्रेथ। गर्मियों के मौसम में या जब आपको बहुत गुस्सा या स्ट्रेस आए तो अपने टंग को रोल करके एक ट्यूब बनाइए और उससे सांस अंदर खींचे, फिर नाक से सांस बाहर छोड़े। यह आपकी बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस लेवल दोनों को इंस्टेंट कंट्रोल करता है। साथ ही एक छोटी सी हेल्थ टिप्स, सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से कम एक बड़ा ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। सेहत बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी आदतों को बदलना है। दोस्तों चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत, लेकिन कहीं मत जाएगा, इसके बाद आने वाले हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट्स।

दोस्तों, सुबह सवेरे का आज का सफर हेल्थ और वेलनेस के रंगों से भरा रहा। उम्मीद है आज की माइक्रो एक्सरसाइजेस और शीतली ब्रेथ की टिप्स आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करेंगे। याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर ही एक खुशहाल जिंदगी की चाबी है। आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन हमारा और आपका ये रिश्ता और हर सुबह यूं ही चलता रहेगा। अगला प्रोग्राम आने वाला है तो कहीं मत जाएगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपनी सेहत का ख्याल। ये आकाशवाणी टानर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, आपातानी दैनिक समाचार का बुलेटिन यही समाप्त होता है। रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुबह के इस दौर में वक्त हो चुका है आपको दिन भर की सुबह सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराने का। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। इस शो का मकसद आपकी सुबह को ज्ञान और सही जानकारियों से भर देना है। अगले कुछ मिनटों हम न सिर्फ बेहतरीन संगीत का लुत्फ उठाएंगे बल्कि इतिहास के पन्नों पर भी गहरी नजर डालेंगे। साथ ही हम बात करेंगे देश दुनिया की उन बड़े इवेंट्स की जिन्होंने आज के दिन को बदल दिया, और उसके बाद चलेंगे हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। जानकारी और मनोरंजन का इस सफर को शुरू करते हैं इस पहले नए और एनर्जेटिक ट्रैक के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हिस्ट्री की। आज 18 जुलाई है और दुनिया के इतिहास में आज के दिन का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। नजर डालते हैं उन बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया। संयुक्त राष्ट्र के निर्देश पर आज पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला डे मनाती है। यह दिन उनके जन्मदिन पर उन्हें सम्मान देने के लिए चुना गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 67 साल रंग भेद के खिलाफ लड़ने और समाज में बराबरी लाने में समर्पित कर दिए थे। यह दिन पूरी दुनिया को शांति और मानव अधिकारों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आज ही के दिन साल 64 एडी में रोम शहर में एक ऐसी भयानक आग लगी थी जो लगातार 6 दिनों तक जलती रही। इस आग ने उस समय के सबसे महान शहर रोम के 14 में से 10 बड़े हिस्सों को पूरी तरह राख में बदल दिया था। यह इतिहास की सबसे कैटास्ट्रोफिक आग की घटनाओं में गिना जाता है जिसने उस दौर की राजनीति को बदल दिया। टेक्नोलॉजी के लिहाज से आज का दिन 1940 में ऑडियो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। 18 जुलाई 1940 को बर्लिन में पहली बार मैग्नेटिक ऑडियो टेप रिकॉर्डर को पब्लिकली चलाकर दिखाया गया था। इस बदलाव ने आगे चलकर साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की तकनीक को पूरी तरह बदलकर रख दिया। वेस्टर्न एविएशन हिस्ट्री की महान महिला पायलट एमिलिया ईयरहार्ट ने आज ही के दिन 1930 में अकेले सबसे तेजी से उड़ान भरने वाली एक नई वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। उनकी इस कामयाबी ने उस दौर में चल रही मेल डोमिनेटेड एविएशन इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोला और आने वाली पीढ़ियों को आकाश की ऊंचाइयों को छूने की प्रेरित किया। विश्व इतिहास की इन दिलचस्प बातों के बाद आइए सुनते हैं ये बेहद सुहाना और मेलोडियस गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। अब वक्त हो चला है हमारे अपने देश यानी इंडियन हिस्ट्री की उन महत्वपूर्ण पन्नों को देखने को का जो 18 जुलाई के दिन से जुड़ा है। आज ही के दिन 1947 में हमारी आजादी के इतिहास में सबसे बड़ा कानूनी माइलस्टोन था। 18 जून 1947 को ब्रिटिश के किंग जॉर्ज सिक्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर सिग्नेचर्स करके अपनी ऑफिशियल मंजूरी दी थी। इसी कानून के तहत कानूनी तौर पर यह तय हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की रूल खत्म होगा और इंडिया एक सवरेन और आजाद देश बनेगा। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली का जन्मदिन आज ही के दिन 1961 में ब्रिटिश इंडिया के दौर में कादम्बिनी गांगुली की जी का जन्म हुआ था। उन्होंने उस कठिन समय में शिक्षा हासिल की जब महिलाओं के लिए पढ़ना बेहद मुश्किल माना जाता था। वो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे साउथ एशिया की पहली महिला वेस्टर्न ट्रेन डॉक्टर्स में से एक बनी और उन्होंने देश में विमेन एम्पावरमेंट एक मजबूत मिसाल कायम की। जेआरडी टाटा और इंडियन एविएशन की शुरुआत 18 जून का हफ्ता इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और पियोनर जेआरडी टाटा के उस प्रयास के लिए याद किया जाता है जब उन्होंने देश के पहले कमर्शियल मेल फ्लाइट उड़ाई थी। उनकी इसी दूरदर्शिता और पहल ने आगे चलकर देश के नेशनल कैरियर एयर इंडिया की बुनियाद रखी, इसीलिए उन्हें इंडियन एविएशन का पिता मां भी कहा जाता है। देश के इस गौरवशाली इतिहास को जानने के बाद चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश की बड़ी हेडलाइंस पर।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट और अब वक्त हो चुका है आज 18 जुलाई 2024 के अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों की सबसे बड़ी हेडलाइंस और उनकी पूरी डिटेल्स का।

पहली बड़ी खबर हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी की तरफ से है। उन्होंने बताया है कि अरुणाचल ने पिछले कुछ सालों में एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश विटनेस किया है। सीएम ने डाटा शेयर करते हुए साफ किया है कि स्टेट के जीएसडीपी 148% बढ़ा है और कनेक्टिविटी हर कोने तक पहुंच रही है, जिससे बॉर्डर एरियाज और दूर दराज के गांवों तेजी से विकास से जुड़ रहे हैं। अगली खबर दिबांग वैली से है, जहां एचआरआईएफ ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की स्टेट यूनिट ने एक बड़े प्रोब यानी जांच की मांग की है पीएमजीएसवाई रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर। उनका कहना है कि दिबांग वैली में बन रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल हो सके। वहीं तेरा डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी और शांति की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार प्रेशर के चलते एनएससीएन के एक एक्टिव मिलिटेंट्स ने तेरा के कौनसा में सरेंडर कर दिया है। उसने अपने वेपन्स के साथ सरेंडर किया है और मेन स्ट्रीम जिंदगी में लौटने का फैसला किया, जो हमारे स्टेट की पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा बूस्ट है। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में बस इतना ही। आशा करती हूं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यह आकाशवाणी चैनल का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

स्वागत है आप सबका फिर से दोस्तों। आप सुन रहे थे तागिन दालेक न्यूज का बुलेटिन। रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुबह की इस धीमी और शीतल हवाओं में वक्त हो चुका है गुजरे जमाने की उन सुनहरी यादों को ताजा करने का, जिन्होंने संगीत की दुनिया को अमर बना दिया है। आप सुन रहे हैं हमारा बेहद खास और हर दिल अजीज प्रोग्राम सदाबहार। इस प्रोग्राम में अगले कुछ मिनटों हम साथ मिलकर सुनेंगे बीते दौर की वो एवरग्रीन नगमे जो आज भी हमारे दिलों में एक अलग एहसास जगाता है। लेकिन संगीत के इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हमारे राज्य के मौसम की, ताकि आपका आज का दिन पूरी तैयारी के साथ बीते। आइए सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में इस पहले सुनहरे और सदाबहार गीत के साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। संगीत के इस सिलसिले के बीच आइए आप सीधे रुख करते हैं मौसम की तरफ। आईएमडी अरुणाचल प्रदेश के आज के ताजा बुलेटिन के मुताबिक हमारे राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी ईटानगर की। आईएमडी के मुताबिक ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में आज आकाश में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली है और दोपहर या शाम तक यहां एक या दो दौर में हल्की सी मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो आज ईटानगर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी का स्तर थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए दोपहर के समय हल्की उमस महसूस हो सकती है। ईटानगर के इस मौसम की बात, चलिए दोबारा लौटते हैं यादों के जराकों में और सुनते हैं और शानदार पुराना नगमा।
1: लेटेस्ट अपडेट

दोस्तों आइए अब बात करते हैं ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के मौसम की, क्योंकि आईएमडी अरुणाचल प्रदेश ने पूरे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वेदर वार्निंग और फोरकास्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी उम्मीद है। खासकर हमारे जो बॉर्डर और हिली एरिया डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहां मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। आईएमडी ने राज्य के आइसोलेटेड प्लेसेस यानी कुछ खास इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं तेज बुछारें पड़ सकती हैं। बारिश के साथ साथ कई इलाकों में गरज और चमक की भी संभावना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है जो पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर टेम्पररी वाटर लॉगिंग या हल्की मडस्लाइड देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाके जैसे तवांग और बोमदिला में मौसम काफी ठंडा और सुहाना बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में तापमान थोड़ा बड़ा रहेगा। मौसम की इस पूरी जानकारी के बाद अब वक्त है आपको सुकून देने वाले एक एवरग्रीन गीत से जोड़ने का। सुनिए ये ट्रैक और मिलिए मुझसे ठीक इसके बाद।

प्रस्तुत हुई थी आज की हमारी मौसम की डिटेल रिपोर्ट और पुराने गीतों का एक छोटा सा सिलसिला। आईएमडी के मौसम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपने दिन की योजना बनाई है, और अगर पहाड़ी इलाकों में है तो सावधानी जरूर बरतेगा। सदाबहार प्रोग्राम का आज का सफर यहां समाप्त होता है, लेकिन संगीत और जानकारी का यह सिलसिला हमारे स्टेशन पर लगातार चलता रहेगा। अगले प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। यह आकाशवाणी चैनल कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: काटा लगे।
1: हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में

0: 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था तो मैं वापस गया अपने

0: वेलकम बैक दोस्तों, दिल्ली और शिलांग से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कैपिटल सिटी ईटानगर और हमारे राज्य के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुबह के इस दौर में वक्त हो चुका है एक ऐसे सफर पर चलने का जो हमारे दिमाग को नए विचारों और ज्ञान से भर देगा। आप सुन रहे हैं हमारा बेहद खास और एजुकेशनल सेगमेंट हेलो ईटानगर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आप तक बातें पहुंचाना नहीं है बल्कि हर दिन को कुछ नया सीखना और सिखाना है। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत, शांति और बराबरी का पाठ पढ़ाया। लेकिन इस ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं इस सुबह का और बेहतरीन बनाने के लिए एक बेहद प्यारा और इस गीत को आप एंजॉय कीजिएगा।
1: हेलो ईटानगर।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने दुनिया का इतिहास बदल दिया और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है नेल्सन मंडेला। जी हाँ, आज 18 जुलाई है और आज पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2009 में ऑफिशियली ये घोषणा की थी कि हर साल 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर यह दिन मनाया जाए। आइए इनकी जिंदगी के शुरुआती संघर्ष और उस कानून को समझते हैं जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। साउथ अफ्रीका में चल रहे अपार्टाइड यानी रंगभेद कानून के तहत गोरी सरकार ने ब्लैक और व्हाइट लोगों के लिए हर चीज अलग कर दी थी। अलग बस, अलग स्कूल, अलग हॉस्पिटल और यहाँ तक कि वोट्स देने का अधिकार भी नहीं था। मंडेला जी ने जब इस अन्याय के खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर आवाज उठाई तो उन्होंने रिवोनिया ट्रायल के तहत देशद्रोह का आरोपी बनाकर रोबेन आइलैंड की उनकी सबसे खून खराबा और सख्त जेल में भेज दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 27 साल जेल की चार दीवारी में बिताए जहां उनसे पत्थर टूटवाए जाते थे और उन्हें हर तरह से टॉर्चर किया जाता था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। इस महान नेता की इस शुरुआती संघर्ष के बाद आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं हमारा दूसरा ट्रैक।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पर हमारी एजुकेशनल चर्चा जारी है। आइए अब बात करते हैं उनकी जेल से रिहाई और उसके बाद के उस दौर की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। साल 1990 में जब दुनिया भर का प्रेशर बढ़ा तो मंडेला जी को रिहा किया गया, लेकिन सबसे बड़ी सीख जो उनकी जिंदगी से मिलती है वो है उनकी रिकॉन्सिलिएशन पॉलिसी यानी माफ करने की नीति। जब वो जेल से बाहर आए 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उन्हीं लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें 27 साल तक जेल में रखा था। उन्होंने कहा कि अगर हम बदला लेंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक रेनबो नेशन बनाया जहां हर रंग और हर जाति के लोग मिलकर रह सके। उनकी इस महान सोच के लिए साल 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और हमारे देश इंडिया ने उनके इस योगदान को उतना ही सम्मान दिया है जितना हम महात्मा गांधी को देते थे। नेल्सन मंडेला जी को इंडिया का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया। वो उन चुनिंदा गैर भारतीय लोगों में से है जिन्होंने ये सम्मान मिला, जो ये साबित करता है कि उनके विचार किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। यूनाइटेड नेशन हर साल इस दिन पर एक कैंपेन चलाता है जिसे कहते हैं 27 मिनट्स कैंपेन। इसका एजुकेशन मतलब ये है कि जब मंडेला जी ने समाज के लिए अपने जीवन के 67 साल दिए तो क्या हम अपनी जिंदगी के सिर्फ 67 मिनट्स किसी की मदद करने या समाज को बेहतर बनाने के लिए नहीं दे सकते? इन्हीं अनमोल विचारों के साथ चलिए सुनते हैं आज का हमारा तीसरा और आखिरी गाना।
1: द बेस्ट गिफ्ट फॉर
2: रह जाने दे
1: फॉर पापा मम्मी।

दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी ने एक बार कहा था और मैं उनकी लाइंस को कोट करना चाहूंगी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। उन्होंने ये भी साबित किया कि आजादी सिर्फ जंजीरें तोड़ना नहीं है बल्कि इस तरह जीना है कि दूसरों की आजादी का सम्मान हो सके। उम्मीद है आज का ये विशेष एजुकेशनल सेगमेंट आप सभी को पसंद आया होगा और हम सब मिलकर उनके बताए शांति और बराबरी के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। हेलो ईटानगर का आज का सेगमेंट यहां समाप्त होता है, लेकिन जानकारी और संगीत का यह सिलसिला चलता रहेगा। अगले प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। स्काई रूट एरोस्पेस आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला प्रक्षेपण करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट तेज और आवश्यकता के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा और नवाचार को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र

0: छात्रों के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले उन्होंने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आयेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चेन यूफी के खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। दूसरे गेम में वे 15-10 से आगे थीं, तभी चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur. India's first private orbital rocket, Vikram 1, developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, is all set for its maiden test flight today as part of Mission Agaman. The liftoff is scheduled for 11:30 a.m. Indian Standard Time from the first launch pad at the Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota in Andhra Pradesh. Prime Minister Narendra Modi described the mission as a historic new chapter in India's space journey. He noted that the 4-stage rocket has been designed to provide rapid and on-demand launch services. In a social media post, the Prime Minister further urged citizens, especially the youth, to follow this historic mission and join in wishing Team Skyroot success by using the hashtag #IndiaWithVikram1. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, ABSS, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, inauguration of 75 redeveloped railway stations reflect the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया।

दोस्तों, दिल्ली से राष्ट्रीय समाचार का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। रेडियो के सभी चहेते श्रोताओं को मेरा यानी आपके दोस्त और होस्ट आरजी आजू का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के इस ताजा धूप में वक्त हो चुका है थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारे एंटरटेनमेंट की बातें करने का। आप सुन रहे हैं हमारा सबसे गर्मा गर्म और मजेदार सेगमेंट फिल्मी गपशप। दोस्तों, अगर आप भी फिल्मी दीवाने हैं, अगर आपको भी जानना है कि टिंसल टाउन में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और इस वीकेंड ओटीटी पर क्या नया धमाका होने वाला है, तो अगले कुछ मिनट कहीं मत जाइएगा। हम और आप मिलकर करेंगे बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया की बहुत सारी गपशप। तो चलिए इस फिल्मी सफर के आगाज करते हैं इस पहले

वेलकम बैक फिल्मी दीवानों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप और मैं हूं आपके साथ ही याजू। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं बड़े पर्दे यानी बॉक्स ऑफिस की तरफ, जहां इस वक्त का सबसे बड़ा डिस्कशन चल रहा है अपकमिंग मेगा क्लैशेस और कंट रिलीजेस पर। बॉलीवुड के अंदर इस वक्त सीक्वल्स और एक्शन सिनेमा का दबदबा पूरी तरह से बरकरार है। सबसे बड़ी चर्चा है इस वक्त रणबीर कपूर की आने वाली मेगा बजट एक्शन थ्रिलर और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रही है। हाल ही में उन्हें प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर्स ने जो लीक्स और बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए हैं, उसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही हाइप क्रिएट कर दी है। फैंस अलग ही हाइप उनके नए रग्ड लुक को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज हुई मिड बजट कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। श्रीकांत और मुंजा जैसी फिल्म की सफलता के बाद प्रोड्यूसर अब यूनिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। चलिए बॉक्स ऑफिस की इस रिपोर्ट के बाद सुनते हैं आज का हमारा दूसरा सुपरहिट गाना, जो इस वक्त शायद सबको ही पसंद आएगा।

तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों बड़े पर्दे के साथ साथ अगर हम टिंसल टाउन के सुपरस्टार क्लैशर्स की बात ना करें तो गपशप अधूरी रह जाती है। इस साल के आखिर में आने वाली बड़ी फिल्मों जैसे सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के मैसिव रेस्पॉन्स के बाद अब साल 2026 के मिड और एंड की प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली है, उसके इंटरनेशनल एक्शन शेड्यूल की ताजी खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए हॉलीवुड के टॉप एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया गया है और लंदन में इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट शूट हो चुका है। वहीं सलमान खान भी अपनी अगली मूवी के लिए तैयार में लगे हुए हैं। चलिए इन सुपरस्टार की अपडेट्स के बाद लेट्स प्ले आवर थर्ड ट्रैक।

दोस्तों तो बॉलीवुड में सिर्फ बड़ी फिल्मों की ही चर्चा नहीं है बल्कि नई ऑन स्क्रीन जोड़ियां और कास्टिंग अपडेट्स ने भी सबका ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त कार्तिक आर्यन और तृप्ति धिमरी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर लगातार बातें हो रही है। एक नए रोमांटिक ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए दोनों को एक साथ साइन करने की अनकन्फर्म रिपोर्ट है, तो उनके फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट हो सकती है। तृप्ति धिमरी जो इस वक्त बॉलीवुड की नेशनल क्रश बनी हुई है, उनके पास बैक टू बैक तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक की शूटिंग अगले महीने से शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ आलिया भट्ट की एक्शन थ्रिलर अल्फा जो YRF की स्पाई यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो मूवी अभी भी थिएटर पर धूम मचा रही है। चलिए इस ग्लैमरस अपडेट के बाद सुनते हैं आज का ये अगला गाना।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

दोस्तों, थिएटर्स की बात अब रुक करते हैं उस स्क्रीन की तरफ जो हमारी जेब में रहती है, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, एमेजन प्राइम, हॉटस्टार और जियो सिनेमा पर इस वीकेंड कंटेंट की फ्लड आई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उन वेब सीरीज की जिसका लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे। मिर्जापुर ट्री के धमाके के बाद अब ओटीटी पर सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर्स का एक नया दौर शुरू हुआ है। एक नए इन्वेस्टिगेटिव ट्रेलर शो को नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज किया गया है जिसमें एक टॉप बॉलीवुड एक्टर डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। इस शो को लेकर क्रिटिक्स के रिव्यूज बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं और इसी के वीकेंड का मस्ट वॉच बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियो सिनेमा पर चल रहे अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शोज और

लीगल ड्रामास को लेकर भी यंग ऑडियंस में काफी क्रेज है, जहां हर हफ्ते नए ट्विस्ट और एलिमिनेशन इंटरनेट पर ट्रेंड करते हैं। चलिए ओटीटी की इस गर्मा गर्म दोस्त के बाद सुनते हैं आज का अगला गाना।

फिल्म रिलीजेस का भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। बड़े एक्टर्स अब सिर्फ थिएटर्स तक महमूद नहीं है। हाल ही में विकी कौशल और सारा अली खान की एक अनरिलीज या डायरेक्ट ओटीटी रिलीज के लिए एक बड़ी डील साइन हुई है। इसके साथ ही साउथ इंडिया की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे कल्कि 2898 AD और बाकी बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अब अपने हिंदी डिजिटल प्रीमियर्स के लिए रेडी हो चुके हैं, जिससे उन लोगों को घर बैठे ही 4K में सिनेमा का मजा मिलने वाला है जो थिएटर्स नहीं जा पाए थे। इसके अलावा अमेजन प्राइम पर इंटरनेशनल स्पाई सीरीज के इंडियन स्पिन ऑफ जैसे सिटाडेल हनी बनी, जिसमें वरुण धवन और समांतर रूद प्रभु है, उसके पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन स्ट्रेटजी को लेकर भी वीडियो वायरल हुए थे। चलिए इसी के साथ सुनते हैं आज का हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक श्रोताओं, फिल्मी गपशप के आखिरी सेगमेंट में आपका स्वागत है। जाते जाते बात कर लेते हैं तिंजल टाउन की फैशन और ग्लोबल अचीवमेंट्स की। बॉलीवुड सेलेब्स इस वक्त सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल फैशन वीक्स और ग्लोबल ब्रांड एंडोर्समेंट में सबसे आगे चल रहा है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और करीना कपूर खान जैसे बड़े नाम पेरिस और मिलान के टॉप लग्जरी फैशन हाउसेज के ग्लोबल फेस बनकर इंडिया का नाम ऊंचा कर रहे हैं और उनके एयरपोर्ट लुक से लेकर रेड कार्पेट अपीयरेंसेस तक हर चीज पर पेपराज़ी की गहरी नजर है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी फिल्मी और डिजिटल दुनिया की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको टिंसल टाउन की ये सारी ताजी खबरें पसंद आई होंगी। अब वक्त हो चुका है आज के हमारे आखिरी गाने का। इस गाने का लुफ्त उठाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेशन के साथ अगले प्रोग्राम के लिए। आकाशवाणी इटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab yesterday. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, ABSS, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. India's first private orbital rocket, Vikram 1, developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, is all set for its maiden test flight today as part of Mission Agaman. The liftoff is scheduled for 11:30 a.m. Indian time from the first launch pad at the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The launch will mark the first flight of an orbital class rocket fully designed and developed by an Indian private company from domestic soil. Vikram 1 is named in honor of father of the Indian space program, Dr. Vikram Sarabhai. Prime Minister Narendra Modi described the mission as a historic new chapter in India's space journey. The Prime Minister urged citizens, especially the youth, to follow this historic mission and join in wishing Team Skyroot success by using the hashtag India with Vikram 1. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jamgachi in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of Parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence from Monday and will continue till 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. Activist Sonam Wangchuk has been taken to a government hospital for essential medical care.

0: नमस्कार दोस्तों, दिल्ली और टिंसल टाउन की सभी चटपटी खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है दिन के आखिरी और सबसे मनपसंद सेगमेंट यानी रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, शो का नियम बेहद सिंपल है, मर्जी आपकी और संगीत भी आपका। दिन भर की थकान के बाद अब अगले कुछ घंटे सिर्फ आपकी पसंद के गाने बजेंगे और आपकी भेजी हुई प्यारी बातें पूरी राज्य तक पहुंचेगी। तो चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली रिक्वेस्ट के साथ।

0: तो दोस्तों चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली रिक्वेस्ट के साथ। हमें मैसेज भेजा है हर्षित गोस्वामी ने बोगाकात असम से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म जग्गा जासूस का एक बेहद कोकी और मजेदार ट्रैक। हर्षित आपकी रिक्वेस्ट पर और बाकी सभी श्रोताओं के लिए पेश है ये गाना खाना खाके चले गए। अब आप इस गाने का लुफ्त उठाइए और बाकी सभी लिसनर्स बस एक मिनट इंतजार करें क्योंकि आपकी भेजी हुई मैसेजेस अभी भी लाइनअप में बिल्कुल तैयार है। नए गाने लेकर मिलते हैं ठीक इसके बाद।
1: चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
3: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
4: चले गए चले गए

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह का आखिरी और आपका अपना शो रेडियो डिमांड संगीत। और रिक्वेस्ट का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और हमारे अगले रिक्वेस्ट है अमल बासुमतारी जी। उन्होंने हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजी है और एक बेहद ही खूबसूरत एवरग्रीन ट्रैक चूज किया है। कुमार सानू जी की आवाज में फिल्म इम्तिहान से हिट सॉन्ग इस तरह आशिकी का। और अमल जी ने ये गाना किसी एक के लिए नहीं बल्कि अपने सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट किया है। दोस्ती का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, चाहे कितना भी बागडोर हो, दोस्तों के बिना हर महफिल अधूरी लगती है। तो अमल जी और उनके सभी दोस्तों के लिए और साथ ही हमारे बाकी श्रोताओं के लिए पेश है ये सुनहरा ट्रैक।
1: सब्सक्राइब नाउ।

0: का असर छोड़।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

वैसे कहना पड़ेगा क्या बात है अमल जी और उनके दोस्तों की दोस्ती देखकर तो दिल बिल्कुल खुश हो गया। पर दोस्तों जैसे मैंने कहा था रेडियो ऑन डिमांड की महफिल अभी शुरू हुई है और हमारे अगले रिक्वेस्टर हमारा सबसे इंतजार कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं सुनारी असम की तरफ जहां से बाइकोन मुंडा जी ने हमें याद किया है। हम बाइकोन आपका नाम जितना प्यारा है आपकी चॉइस भी उतनी ही लाजवाब है। बाइकोन ने रिक्वेस्ट किया है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में अर्ली 2000s का एक बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से। बाइकोन कह रहे हैं कि जब से उन्होंने इस गाने को सुना है ये उनके दिल के बेहद करीब है। तो बाइकोन आपकी शाम और भी हसीन बनाने के लिए सुनारी के खूबसूरत मौसम के नाम पेश है आपका मनपसंद गाना जब तुझे मैंने देखा।

वैसे दोस्तों, जब बात असम की चल रही हो तो भला हम दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड को कैसे बोल सकते हैं? जी हाँ, अगली रिक्वेस्ट आई है माजुली असम से देवशीष हजारिका जी का। देवशीष माजुली की इस उस शांत और सांस्कृतिक फाजा से आपका हमारे स्टेशन तक आने ही अपने आप में एक बहुत स्पेशल है। और आपने एक गाना भी चुना है शंकर महादेवन जी की आवाज में फिल्म चांदी चौक टू चाइना से। देवशीष ने लिखा है कि ये गाना उन्हें बहुत सुकून देता है जब वो दिन भर के काम के बाद थक जाते हैं। तो देवशीष, आपके सुकून के लिए और माजुली की सभी प्यारे श्रोताओं के लिए पेश है ये सुफीना और रूहानी ट्रैक।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड और अब वक्त हो चुका है आज की हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है विश्वनाथ चारियाली असम से कुमार जी ने। कुमार ने हमें डायरेक्ट मैसेज रिक्वेस्ट भेजा है ऐसी पॉप कल्चर फेनोमेनम गाने के, जिसके म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन थे और जिन्होंने साल 2000 में इंडियन सिनेमा में एक नया इतिहास रचा था। हम बात कर रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है के सुपर हिट ट्रैक, जिसे उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। तो कुमार जी की इस रिक्वेस्ट पर विश्वनाथ चरियाली के सभी लिसनर्स के लिए लाउड वॉल्यूम पर पेश है ये आइकॉनिक हिट दिल ने दिल को पुकारा।

Then let's go for it.

दोस्तों संगीत और रिक्वेस्ट का ये सिलसिला लगातार चल रहा है और इस वक्त हमारे पास जो अगली रिक्वेस्ट आई है वो बेहद खास है। ये रिक्वेस्ट हमें संयुक्त रूप से भेजी है जोगेंद्र सोनाली और तोरम केरी ने, जो हमें सुन रहे हैं सरिहाजन गाड़ी आंगलोंग से। आप तीनों ने सॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ हमें याद दिलाया है कि आज के ही दिन 18 जुलाई को साल 2012 में इंडियन सिनेमा के सबसे पहले ओरिजिनल सुपरस्टार राजेश खन्ना जी इस दुनिया को अलविदा किए गए थे। उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए आप तीनों ने उन्हीं की फिल्म का एक बेहद यादगार ट्रैक चुनकर भेजा है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में साल 1974 में आई फिल्म अजनबी से पेश है आरती बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ ये सुनहरा गीत, जो गेंद्र सोनाली और तोरम केरी की रिक्वेस्ट पर सरिहाजन और हमारे स्टेशन से जुड़े सभी श्रोताओं के लिए हम प्ले करने वाले हैं। राजेश खन्ना जी की याद में ये आइकॉनिक ट्रैक, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों सरी हाजन से आई इस इमोशनल रिक्वेस्ट के बाद विद्यम डिमांड पर चले रुक करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ. हमें ये रिक्वेस्ट भेजी है हमारी डेली लिसनर ज्योति सुरीन ने हेलम असम से. ज्योति रोज हमारे स्टेशन से जुड़ती है और उन्होंने आज के लिए चुना है बेहद ही खूबसूरत और सुकून भरा ट्रैक ए दिल जरा. दोस्तों इस गाने के बोल और इसके संगीत कुछ ऐसा है जो सीधे दिल को छू जाता है और भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को एक पल के ठहराव देता है. एक ऐसी धुन जो सच में सुनने वालों को एक सुहाना जोन में लेकर चली जाती है. तो हमारी रेगुलर लिसनर ज्योति सुरेन जी की इस बेहतरीन चॉइस पर हेलम के सभी श्रोताओं के लिए ये प्यारा सा ट्रैक. श्रोताओं इस गीत के बाद हमारे आज का सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है. हमें पता है कि आप में से बहुत से लोग अभी गाना सुनना चाहते हैं और आपकी रिक्वेस्ट भी पेंडिंग है, लेकिन टाइम लिमिट की मजबूरी के चलते हम आज और गाने शामिल नहीं कर पाएंगे. जिन श्रोताओं के गाने आज नहीं बजा पाएंगे उनसे माफी चाहूंगी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट अगली दिन के लिए आप रिक्वेस्ट जरूर भेज सकते हैं. श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड. इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं. उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीत में सफर बेहद पसंद आया होगा. आज के इस पहले प्रसारण मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गैर अते और तकनीकी अभियंता तनातुम. दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा. अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नूरी के साथ अरुण एफएम पर. तो अब मुझे अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत. ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है. आप सुनते रहिए अरुण एफएम. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार दोस्तों. पर जाने से पहले आपको ये गीत छोड़ जा रही हूँ. आशा करती हूँ कि आप इस गीत

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत आज दिन में 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट स्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाट सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज अचा वास्क्वेज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार श्रोता दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के दूसरी प्रसारण सभा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आरजे याजू को, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपना प्रसारण संपन्न कर स्टूडियो को जिम्मेदारी से हमें सौंप दी है। मैं हूं आप सबकी अपनी आरजे नूरी, मेरे साथ है प्रसारण अधिकारी पी डोले और तकनीकी अभियंता एके सक्सेना। तो आइए आज के सुहाने बरसाती दिन की शुरुआत करते हैं संगीत की फुहारों के साथ। पेश है हमारा पहला संगीतमय पड़ाव फिल्मी लहर, जिसमें आज हम सुनेंगे बारिश की रिमझिम, बीगी यादों और प्यार भरे एहसासों से सजी चुनिंदा सदाबहार और लोकप्रिय बॉलीवुड गीत। तो श्रोता दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बरसेगी धुनें, महकेंगी यादें और संगीत की फुहारें कर देंगी आपके दिन को और भी खास। सुनिए फिल्मी लहर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ, आप सभी के बहुत ही चहते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

दोस्तों, ईटानगर की वादियों में इस वक्त बारिश के फुहारे अपना जादू बिखेर रही है और कहीं छतों पर बूंदों की टप टप है, कहीं पेड़ों की पंक्तियां भीग कर और भी हरी भरी हो गई है, तो कहीं ठंडी हवाएं मौसम में एक अलग ही सुकून घोल रही है। और साथ ही साथ आकाशवाणी के FM बैंड 103.1 MHz अरुण FM पर RJ नूरी के साथ आप सुन रहे हैं मौसम को भीगा भीगा और सुकून बनाने के लिए फिल्मी लहर। और फिल्मी लहर का आज का थीम है मॉनसून बॉलीवुड। जी हाँ, ये जो गीत आपने सुना अभी अभी किशोर कुमार की आवाज में, चलती का नाम गाड़ी से एक भीगी भागी सी लड़की एक अजनबी से मिले, अगर आज के जमाने में ऐसा कोई सिचुएशन होता ना, लोग कहते कि यू आर स्टॉकिंग मी, आपको मैं जेल भेज दूंगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन को इतने रोमांटिकली, इतने सेंशुअली और इतने प्योर तरीके से दिखाना, उस जमाने के जो फिल्म मेकर्स थे और जो डायरेक्टर्स थे और कोरियोग्राफर्स थे, उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो सोच है किसी भीगी भागी सी लड़की है, वो अकेली है, आगे न पीछे कोई है, लेकिन इसमें डरावनी नहीं लगती, बहुत क्यूट सा लगता है। ऐसा सोच रखना बहुत ही बड़ी बात है और आज के जमाने में तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपको स्टॉकिंग के केस में आपको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्मी लहर है, फिल्मी लहर में हम टेक्निकल और लीगल बातें नहीं करेंगे, बस दिल को सुकून देने वाली बातें ही करेंगे। जी हाँ, कहते ना कि बारिश का मौसम सिर्फ धरती को नहीं भिगोता, यह दिल के उन कोनों को भी छू जाता है जहां यादें चुपचाप अपना बसेरा बनाए बैठी होती है। कभी बचपन के कागज की नाव याद आ जाती है, तो कभी किसी के साथ भीगी हुई वो प्यारी सी शाम।

दोस्तों, सारा शहर बारिश की रिमझिम जैसे खूबसूरत धुन में पिरो रही हो। खिड़की के शीशे पर ठहरती बूंदे, भीगी हुई सड़कें, मिट्टी की सोनी सी खुशबू और ठंडी हवाओं का हल्का सा स्पर्श, ऐसा लगता है मानो मौसम खुद ही कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। दोस्तों, बारिश का मौसम कुछ अलग ही होता है। यह सिर्फ आसमान से बरसता पानी नहीं, बल्कि यादों का एक कारवां भी साथ लेकर आता है। कभी बचपन में बारिश में भीगने की शरारतें याद आ जाती है, तो कागज की नावें, गर्मा गर्म पकौड़ों की महक, माँ की पुकार, तो कभी जिंदगी के किसी ऐसे अपने की याद जिसके साथ बिताए कुछ पल आज भी दिल के किसी कोने में भीगे हुए पड़े हैं। और जब ऐसी बारिश हो तो बॉलीवुड के सदाबहार गीत जैसे उन एहसासों को आवाज दे देते हैं। कुछ धुनें मुस्कुरा देती है, कुछ आंखों को नम कर जाती है, और कुछ गीत हमें चुपचाप उन दिनों में ले जाते हैं जिन्हें हम पीछे तो छोड़ आए मगर भूल कभी नहीं पाए। तो आइए आज की इस बरसाती दिन में घड़ी की सुइयों को कुछ देर के लिए थाम देते हैं, रोक देते हैं और चल पड़ते हैं यादों की उसी हसीन पगडंडी पर जहां हर धुन के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी है। पेश है मानसून के रंग।

और यादों की खुशबू से सजे चुनिंदा बॉलीवुड गीत कार्यक्रम फिल्मी लहर में मेरे साथ यानी आप सभी की रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ आप सभी के बहुत ही चहेते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

जब बारिश का मौसम हो और छतरी की बात ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे छतरी के नीचे नहीं बल्कि खुलकर बारिश में भीगने से मिलते हैं। शायद इसी शरारती एहसास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पिरोए गए है इस अगले गीत में। तो आइए बारिश के इन फुहारों के साथ सुनते हैं फिल्म गोपी किशन का बेहद लोकप्रिय गीत छतरी न खोल बरसात में।

श्रोता दोस्तों, बरसात के इन गानों को यही रोकना पड़ेगा क्योंकि अगला कार्यक्रम आप सभी के लिए पेश है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न मेलोडीज। बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर करने के लिए दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। तो लीजिए आनंद, लीजिए पाश्चात्य संगीत।

0: And that brings us to the end of today's program. Thank you for listening and being with us. This was Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडी आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. वक्त हो चला है आपको लिए चलने का समाचारों की तरफ. आप सुन पाएंगे हिंदी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम वन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आए फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
3: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस से कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ज्ञान मनोरंजन और किसे कहानियों का यह संगम आकाशवाणी का ईटानगर का एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ पल पहले आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। अब वक्त हो जाए फिर से आप सबके साथ चलने को एक और संगीतमय सफर में, और मैं हूं आप सबके साथ आरजे नूरी लेकर बेहतर से बेहतर कार्यक्रम। दोस्तों अभी जो कार्यक्रम आप सुनेंगे वो है यादों की बारात हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। कहते ना कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस किसी पुराने गीत की धुन कानों में पड़ते ही मन बरसों पीछे चला जाता है। वो दिन जब घर में रेडियो बजता था, पूरा परिवार साथ बैठता था और हर गीत दिल में अपनी एक अलग जगह बना लेता था। दोस्तों इन्हीं मीठी यादों को फिर से ताजा करने के लिए हम लेकर आए हैं यादों की बारात सॉन्ग्स फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स। दोस्तों ये महफिल खासतौर पर हमारे बुजुर्ग श्रोताओं के नाम है, क्योंकि कार्यक्रम यह बुजुर्ग श्रोताओं के लिए है, इसलिए ये नहीं है कि हमारे जो न्यू जनरेशन यंग जनरेशन जो है इस प्रोग्राम को ना सुने, बिल्कुल सुने और ये भी पहचाने कि पुराने जमाने के जो गाने हैं वो कितने सुहाने हुआ करते थे, कितने दिल के करीब हुआ करते थे। इसलिए तो आज के जनरेशन के लोग पुराने गानों को फिर से रिक्रिएट करते हैं और नए तरीके से पेश करते हैं ताकि एक जनरेशनल गैप को भर दिया जा सके। तो दोस्तों ये जो महफिल आप सुन रहे हैं वो है हमारे बुजुर्ग श्रोताओं के लिए, यानी कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इन सदाबहार गीत को अपने दौर में जिया है, गुनगुनाया है और अपनी जिंदगी की खूबसूरत यादों में सहज कर रखा है। तो आइए आज कुछ देर के लिए बीते हुए उन सुनहरे दिनों की सैर करते हैं। हो सकता है आज का कोई गीत आपको अपने बचपन की याद दिला दे, किसी पुराने दोस्त की, किसी अपने की या फिर जिंदगी के किसी बेहद खास पल की। तो मैं हूं आप सबके साथ आरजे नूरी और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर यादों के इसी खूबसूरत सफर का आनंद लेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले सदाबहार गीत के साथ। सुनिए, मुस्कुराइए और यादों को फिर से जी लीजिए आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम के साथ।

दोस्तों, यादों की बारात सॉन्ग्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स में आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये बेहद ही खूबसूरत गीत आने वाले पल। दोस्तों, अक्सर जब हम हमारे बुजुर्ग श्रोताओं से बात करते हैं तो उनकी बातों में एक दिलचस्प बात बार बार सुनने को मिलती है। वे कहते हैं कि आज के बॉलीवुड गीत तकनीक बीट्स और नए अंदाज से भरपूर है और युवाओं को बेहद पसंद भी आते हैं, लेकिन जब बात दिल को छू लेने वाली धुनों और बोलों की आती है तो उनका मन अब भी पुराने गीतों में बसता है। शायद इसलिए क्योंकि उन गीतों के साथ सिर्फ संगीत नहीं की बल्कि पूरी जिंदगी जुड़ी हुई थी। वो समय जब शाम होते ही घर में रेडियो बजता था, पूरा परिवार एक साथ बैठकर गीत सुनता था, दोस्तों के साथ गुनगुनाना, पड़ोसियों के घर से आती धुनों को सुनना और किसी पसंदीदा गीत का इंतजार करना, यही तो छोटी छोटी खुशियां थी। दोस्तों, उस दौर में सुविधाएं आज जितनी नहीं थी, लेकिन लोग कहते हैं कि रिश्तों में नजदीकियां ज्यादा थी, मिलने जुलने का समय था, बातचीत का सिलसिला था, दोस्ती में अपनापन था और परिवार के साथ बिताए गए पल सबसे बड़ी दौलत माने जाते थे। शायद यही वजह है कि पुराने गीत आज भी सुनते ही वो दिन, वो लोग, वो मुस्कुराहटें फिर से आंखों के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, आइए आज उन्हीं सुनहरी यादों को एक बार फिर ताजा करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा सदाबहार गीत जो शायद आपको भी आपके जीवन के किसी खूबसूरत पल को फिर से मिला दे। और अगर हमारे

यंग जनरेशन के लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, तो आपने बुजुर्ग दोस्तों को, अपने बुजुर्ग माता पिता और जितने भी अपने हैं उन तक ये जरूर मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि इस वक्त आप सबके लिए खास कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। जी हाँ, दिल की बात इसलिए क्योंकि हर गीत हमारे दिल की एहसासों को, दिल के एहसासों को बयान करते हैं और इसीलिए ही हम बहुत रिलेट कर पाते हैं हमारे फिल्मी गानों को, क्योंकि फिल्मी गाने केवल पर्दों पर तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे दिलों तक उतर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए लिखा गया है और यही तो मेरी एहसास है। इसलिए कहते हैं हिंदी फिल्मी गाने हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और इस वक्त जो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, वो है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, उनके दौर के कुछ हसीन नगमों के साथ हम हाजिर है। चलिए अगला गीत उनके लिए।

दोस्तों, वक्त के साथ दुनिया बदलती रहती है और हम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। गुजरते हुए लम्हों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन यादों के पन्ने पलटने पर रोक नहीं सकता। बस यही तो खास बात है पुराने गीतों की। इन्हें सुनते ही जिंदगी के न जाने कितने खूबसूरत पल, कितने अपने चेहरे और कितनी मीठी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। तो आइए यादों के इस सुरेले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा, जो यकीनन हमारे बुजुर्ग दोस्तों को उनके सुनहरे दिनों की सैर जरूर कराएगा और शायद हम सबके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान ले आएगा। लीजिए पेश है अगला खूबसूरत गीत कार्यक्रम यादों की बारात सॉन्ग्स फॉर सीनियर सिटीजन्स में। और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी के FM बैंड 103.1 MHz अरुण FM पर और इस सफर में आरजे नूरी के साथ।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ ही यादों की बारात का आज का यह सुरीला सफर यही पूरा होता है। उम्मीद है कि आज के इन सदाबहार गीतों ने हमारे बुजुर्ग दोस्तों की कई खूबसूरत यादों को फिर से ताजा किया होगा और बाकी श्रोताओं को भी उस दौर की सादगी, अपनापन और मधुर संगीत का एहसास जरूर कराया होगा। कहते हैं यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस उन्हें जगाने के लिए एक प्यारी सी धुन की जरूरत होती है। और आज अगर किसी गीत ने आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया हो, किसी अपनी की याद दिला दी हो या जिंदगी के किसी सुनहरे पल तक पहुंचा दिया हो, तो हमारा यह साद काफी सफल है। इस उम्मीद के साथ अब मुझे कार्यक्रम यादों की बारात से इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है वो भी बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि वो हमारे फौजी भाई और बहनों के लिए समर्पित हमारा दैनिक कार्यक्रम है गीतमाला। चलिए कार्यक्रम यादों की बारात से चलते हैं फौजी भाइयों और बहनों के साथ, सुनते हैं अगला कार्यक्रम गीतमाला।

श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतमाला, एक ऐसा संगीतमय कार्यक्रम जो समर्पित है उन वीर जवानों को जो दिन रात हर मौसम और हर परिस्थिति में हमारी मातृभूमि की रक्षा में डटे रहते हैं। सीमाओं की बर्फीली चोटियां हो, घने जंगल हो या दुर्गम पहाड़, हमारे सैनिक अपने परिवार से, अपने अपनों से दूर रहकर पूरे देश को सुरक्षित रखने का दायित्व निभाते हैं। उनके साहस, समर्पण और त्याग को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। आज की यह गीतमाला उन सभी वीर सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को हमारा सादर नमन है। तो आइए संगीत की सुरीली डोर से जुड़ते हैं और सुनते हैं ऐसे गीत जो हौसला भी बढ़ाए, देशभक्ति का जज्बा भी जगाए और दिलों को अपनों के और करीब भी ले आए। सुनेंगे ये प्यारा सा गीत हमारे फौजी भाई और बहनों के लिए।

जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत दूरी बढ़ा देती है। जब अपने लोग हर पल साथ होते हैं तो अक्सर उनकी मौजूदगी हमें सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही उनके और हमारे बीच फासले आ जाते हैं तब एहसास होता है कि उनकी एक मुस्कान, उनकी आवाज, उनका साथ और उनका स्नेह हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी जगह रखते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं। दूरी केवल किलोमीटरों की नहीं होती, वह इंतजार, जिम्मेदारियों और भावनाओं की भी होती है। हमारे वीर जवान इसी दूरी को हर दिन जीते हैं। वे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और अपनों से दूर रहकर भी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उनकी हर सुबह कर्तव्य से शुरू होती है और हर रात देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ ढलती है। उनका त्याग ही हमारी सुरक्षित और निश्चिंत जिंदगी की सबसे मजबूत नींव है। अरुण एफएम की ओर से देश के सभी वीर जवानों को हमारा सादर नमन। अब इसी भावना के साथ सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत, हमारे वीर जवानों को समर्पित। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आप आरजे नूरी के साथ सुन रहे हैं फौजी भाइयों और बहनों का ये दैनिक कार्यक्रम गीतमाला।

श्रोता दोस्तों, संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये दूरियों को भी करीब ले आता है। एक मधुर धुन कभी यादों का झरोखा बन जाती है तो कभी अपनों के एहसास को दिल के और करीब ले आती है। कई बार कुछ गीत ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे ही मन की बात कह जाते हैं। हो सकता है इस वक्त सीमा पर ड्यूटी निभा रहा कोई जवान यह गीत सुनते हुए अपने घर आंगन को याद कर रहा हो, किसी माँ को अपने बेटे की मुस्कान याद आ रही हो, किसी जीवन साथी की आंखें अपने प्रिय के लौट आने की राह देख रही हो, या कोई नन्हा बच्चा अपने पिता के स्नेहिल स्पर्श को महसूस कर रहा हो। यही तो संगीत की ताकत है, यह दूर रहकर भी दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। दोस्तों, अरुण FM की ओर से हम सभी वीर जवानों और उनके परिवारों के सुख सुरक्षा और मंगलमय की जीवन की कामना करते हैं। आपका साहस और समर्पण पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। अब इसी भावना के साथ सुनते हैं आज का अगला मधुर गीत कार्यक्रम गीतमाला में।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का यह सुरीला सफर गीतमाला का यहीं पे समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: भारत का ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद आइए चलिए फिर से चलते हैं एक और सुनहरे दौर की और 1960s से लेकर 1980s के दशक तक, जब सिनेमा यानी कि हिंदी सिनेमा सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि एहसास हुआ करता था, जब गीत सिर्फ धुन नहीं बल्कि कहानी हुआ करते थे। दोस्तों 60s का दशक, 70 का दशक और 80 का दशक वो समय था जब भारतीय सिनेमा शास्त्रीयता से, कविता और मधुरता से भरा हुआ था। तो चले फिर से एक और सफर, क्योंकि अब वक्त हो चला है हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s टू 80s का। आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज के सफर में आरजे नूरी के साथ। चलिए बैक टू बैक सुनते हैं 1960s, 70s और 80s के कुछ हसीन नगमे।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s टू 80s आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आगे चलिए और सुनते हैं अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म नमक हलाल के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यही समाप्त होता है, लेकिन संगीत का सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर। अगला गीत यानी कि अगला सफर नई धुनों का शुरू करेंगे इस खूबसूरत गीत के साथ।

जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

sillat rannena, kyllä ille on rajena.

दोस्तों, ये आकाशवाणी का RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। आप आनंद उठा रहे थे नए धुन हिंदी फिल्मी गाने मेरे साथ, यानी आरजे नूरी के साथ। अब कुछ ही पलों में यानी कि 2 बजते ही आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज, और 2:15 से आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार, और गीतों का सफर हिट्स ऑफ 90s के साथ फिर से लौट कर आएगी मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। तो बने रहे आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हम सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, किस्से, कहानियां और हसीन नगमे जो हमारे दिल को छू जाती है। कुछ ही पलों में, जैसे कि मैंने कहा, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार सुन पाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
5: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: तो चलिए दोस्तों फिर से चलते हैं संगीत के सफर में आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर। और आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो चैनल है वो इंफरटेनमेंट का चैनल है, जहां आपको मिलेगा ज्ञान एवं मनोरंजन से भरा कार्यक्रम, साथ ही साथ सुकून देने वाला संगीत। तो आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। तो देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के बाद अब हम हाजिर हैं आप सबके साथ फिर से चलने को संगीतमय सफर पर। और इस वक्त आप सुनेंगे नॉस्टैल्जिया से भरी हिट्स ऑफ 90s मेरे साथ यानी RJ नूरी के साथ। तो कहते हैं ना कि कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने

तो आइए आज फिर से उन सुरीले नगमों, मीठी धुनों और सुनहरे लम्हों को के सार एक खूबसूरत संगीत यात्रा पर निकलते हैं। मैं हूं आपकी अपनी आरजे नूरी और अगले कुछ समय तक आपका साथ निभाएंगे 90 के दशक के वे सदाबहार गीत जो आज भी उतने ही ताजा, उतने ही दिलकश और उतने ही अपने लगते हैं। तो बढ़ाते हैं इस यादगार सफर को हिट्स ऑफ 90s के पहले खूबसूरत गीत के साथ।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपका फिर से स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों हम बातें कर रहे थे संगीत 90s के, और संगीत का यही तो खास बात है, यही कि सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता बल्कि सीधे दिल के उस कोने तक पहुंच जाता है जहां हमारी सबसे प्यारी यादें सहजी हुई होती है। दोस्तों 90s के दशक के ये गीत भी कुछ ऐसे ही है, इन्हें सुनते ही कभी स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, तो कभी पहली दोस्ती पहला प्यार, तो कभी परिवार के साथ बिताई गई वे बेफिक्र शामें। वक्त भले ही बदल गया हो, तकनीक ने संगीत सुनने के तरीके बदल दिए हो, लेकिन इन गीतों की मिठास आज भी वैसी ही है। यही वजह है कि 90s के ये नगमे हर पीढ़ी के दिल में अपनी एक खास जगह बनाए हुए हैं। मेरे एक श्रोता दोस्त कहते हैं, जो जेन जी को बिलोंग करता है, तो वो कहता है

ये आरजे नूरी 90s के गाने और ज्यादा प्ले कर दिया जी कीजिए। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम जरूर प्ले करते हैं आप सबके लिए हर दौर के गाने, क्योंकि हमारे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर नए पुराने नगमे आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। और खास बात बताऊं कि आप हिट्स ऑफ 90s कब सुन सकते हैं, तो हर दोपहर को 2:30 से लेकर 2:58 तक आप सुन सकते हैं हमें। और अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो आप हमें सुन सकते हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s ठीक 1:10 से लेकर 1:40 तक। और अगर आप बुजुर्ग हैं और आप अपनी यादों को और अपनी यादों की गलियों में जाना चाहते हैं फिर से, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए 12:10 से लेकर 12:30 पर यादों की बरात ऑल सॉन्ग्स फॉर सीनियर सिटीजन्स में। तो ऐसे ही हमारे कई सारे नगमों का सफर रहता है जहां हर दौर के गाने आप तक पहुंचते हैं। और हमारा सफर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर 9:30 तक रहता है, और उस वक्त भी हम आपको लिए चलते हैं यादों के ही गलियारों में भूले बिसरे गीतों के साथ। तो दोस्तों, हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का कार्यक्रम जहां पे हम आपके लिए प्ले करते हैं नए धुने जो आज के ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के उन बुजुर्गों को भी पसंद आता है नए धुन, तो वो भी हम आपके लिए प्ले करते हैं। तो इस वक्त तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, उम्मीद है कि इस सुरीले सफर का आप भरपूर आनंद ले रहे हैं। लीजिए अगला गीत।

0: क्लिक ऑन द बेल आइकन।
1: दोस्तों कभी कभी एक धुन, एक मुखड़ा या किसी गीत की बस पहली पंक्ति ही काफी है हमें बरसों पीछे ले जाने के लिए। 90 का दशक भी कुछ ऐसा ही था, जब खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी, रिश्तों में अपनापन था और गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि सीने से लगाए जाते थे। इन नगमों के साथ न जाने कितनी ही यादें जुड़ी है। स्कूल कॉलेज के दिन, दोस्तों की महफिलें, परिवार के साथ बिताई गई शामें, कैसेट के रील आगे पीछे करना और रेडियो पर अपने पसंदीदा गीत का इंतजार करना और इस गीत के बजते ही चेहरे पर आ जाने वाली वो मुस्कान प्यारी सी। आज जब ये धुनें फिर से कानों में गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ने कुछ पल के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो और यादों का वही सुनहरा मौसम फिर लौट आया हो। तो आइए मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ उन पलों को जीते हैं हिट्स ऑफ 90s में इस अगले गीत के साथ।

और इस गीत को सुनाते सुनाते मैं ये भी आपको याद दिलाते चलूं कि कुछ ही पलों में आप न्यूज हेडलाइंस सुन पाएंगे और उसके बाद मिश्मी कमान समाचार, मिश्मी कमान कार्यक्रम और तायक हमती समाचार और कार्यक्रम। हम फिर से लौट कर आएंगे 3:30 पर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ, तो बने रहिए आकाशवाणी के 103.1 MHz के साथ।

दोस्तों, समाचार सुर्खियां और प्रादेशिक समाचारों और कार्यक्रमों को सुनने के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। दोस्तों, 3:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तो आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजी नूरी। तो चलिए, अब वक्त है बॉलीवुड की रंगीन दुनिया से जुड़ी कुछ ताजा और दिलचस्प खबरों का, जहां हर शुक्रवार के साथ बड़े पर्दे पर उतरती है नई कहानियां, नए किरदार और मनोरंजन का नया रंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे चर्चित रिलीज यानी कि अल्फा की। आलिया भट्ट और शर्वरी की दमदार जोड़ी पहली बार यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की इस बड़े बजट की एक्शन फिल्म में नजर आ रही है। जबरदस्त एक्शन, रोमांचक मिशन और शानदार विजुअल्स के चलते फिल्म दर्शकों का खूब ध्यान खींच रही है। अब रुख करते हैं हंसी और मस्ती की ओर। कॉमेडी फ्रेंचाइजी डमाल 4 भी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। अजय देवगन, हृदय देशमुख, अर्शद वारसी और जावेद जाफरी की टोली एक बार फिर अपने मजेदार कारनामों से दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर रही है। अगर आप पूरे परिवार के साथ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। जी हाँ, दमाल 4 नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप सिनेमा लवर हो यानी कि हल्के फुल्के फिल्मों की, तो ये आपके लिए है। और जो लोग ढूंढते हैं इसमें लॉजिक, तो उनके लिए नहीं है। और अब

श्रोताओं, तो आपको लिए चलो ठीक 3:40 पर वन जो श्रोताओं के समाचार के लिए, उससे पहले आपको छोड़े जाते हैं इस ब्यूटीफुल गीत के साथ। ये आकाशवाणी का रौनक FM 103.1 MHz है।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुलाई लेट मनी बना चट्टारिक हुनिबार इरुमा केम वांचोटाय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी खमे मनी स्टेट कैबिनेट ने स्टेट अंके यंग यंग खनक नुरोंग मा काखू लाखू अंके निंके हान पक माना मै को ले मोट लिसत ली तबी तबी बामा यू फन ले स्टेट कैबिनेट हले अरुणाचल प्रदेश मा खनक नु काक लाख बामा सेसन ले थामंग ले CM Kiers, Chief Minister's Comprehensive Action for Resilience, Equitable and Hard Health State le Rinkaka Daple Lai le Haya CM Kiers Khama CMAAY Chief Minister Arogya Arunachal Yojana CM Organ Transplant Services CMOTS CM Health Emergency Life Protection Services CM Helps CM Free Chemotherapy Services and CM Social Security Schemes, CM SSS Le Pangwai Omai, Cabinet Halawai Mission Suraksha, State Unified Response Against Drugs, Substance, Harm and Addiction Leke Motli Chudap Le Alai Le, Cabinet Hayato Bole State Ma Hingham Motlam Satlam Nakhau Le, स्टेट मयो इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप्स बु नि सबन पोंग अंगोट आंगले आयुष्मान आरोग्य सिविर लेके का बामचु फंडवा मनी स्टेट कैबिनेट डीसी एडीसी एसडीओ हेडक्वार्टर्स बु तो के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाउनशिप लम बु अजान रिंग के रिंगंग ले सीएम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड development plan cm csrdp phase 2 hanpakma ngun jatani horam saban ali karorjo kyakdoa emle ninong ring mani depi sho chakla ring ke khato hume angle nguila le ting khong khanak nu phai hajamot to maile hume lengo haila ka le hajamot hanpakma fan emle e haya shonka อาชุดเลเป่าโง่เลเลติงข้องขนักนูเออากะเคคอมาก็กระจังเก

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।

एकदम बीच में श्रोताओं के समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर संगीत के सफर में हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के 4:07 हो रहे हैं। आप हमारे साथ सुनेंगे हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स।

0: 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम फिल्मी गीत इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में यानी कि 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार, और उसके तुरंत बाद 4:25 पर गुड इवनिंग ईटानगर के साथ आपके साथ होंगी आरजे मंजू। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी बातें, मधुर गीत और साथ बिताए ये पल आपके लिए और आपके दिल में मुस्कान, सुकून और अच्छी यादें छोड़ गए होंगे। और अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पे समाप्त होता है और हम जिम्मेदारी संभालने के लिए स्टूडियो में मंजू, आरजे मंजू पहुंच चुकी है अपने साथ, नए अंदाज, खास दिलकश आवाज और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आरजे मंजू के साथ भी आपका सफर ऐसे ही सुहाना बना रहेगा, क्योंकि अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। तो दोस्तों, कहीं जाएगा नहीं, जुड़े रहिए आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

सुनते रहे खूबसूरत गीत, कहते रहे दिल से दिल की बात और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू बने रहिए। तो प्रसारण अधिकारी श्री पी डोले, तकनीकी अभियंता ए के सक्सेना और मैं यानी कि आरजे नूरी आप सबसे अनुमति चाहते हैं। आप सभी को छोड़े जा रहे इस गीत के साथ। शुभ दिन, अपना ख्याल रखें।

0: नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। और हाँ श्रोता, बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 4:29 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा। और थैंक यू सो मच आरजे नूरी जी, आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। वेल दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके हमारे गीतों के माध्यम से। एक से बढ़कर एक मजेदार गीत चुन चुन कर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये भी बता दूं आपको श्रोता कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता बीसी शर्मा, और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: तो आइए दोस्तों, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर, जो कि भरा हुआ है ज्ञान एवं मनोरंजन से।
3: गुड इवनिंग ईटानगर।

हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ कुछ अच्छी बातें भी होंगी आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान, जिसकी मैंने बताया ही है आपको कि मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। दोस्तों, बारिश में मंजिल दूर नहीं होती, बस थोड़ी सी सावधानी जरूरी होती है। धीरे चलो, सुरक्षित रहो, जीवन से

बिजली के तारों से दूर रहे, गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को बिल्कुल भी ना छुए। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मौसम की जानकारी लेते रहे, मौसम विभाग की चेतावनियों पर जरूर ध्यान दें। भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी मिलने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। केवल उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिया कीजिए इस मौसम में। वैसे तो पानी हर मौसम में साफ ही पीना चाहिए, लेकिन खासतौर पर बारिश के मौसम पर दोस्तों उबला हुआ या बिल्कुल फिल्टर किया हुआ पानी का ही प्रयोग कीजिए। दूषित पानी से ये बहुत सारी बीमारियों को आपकी ओर खींच सकती है। ताजा और गर्म भोजन करें। खुले में बिकने वाले कटे हुए फलों या अस्वच्छ भोजन से बिल्कुल बचें। और भी बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों बारिश के मौसम के बारे में, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है राम लखन फिल्म से। बने रहे इसी तरह से हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: तो दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का राम लखन फिल्म से। हमारी छोटी छोटी सावधानियां हमें हम बड़े हादसों से बचा सकती है। सावधानी ही सुरक्षा है। भारी बारिश में स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए जरूर प्रेरित करें। याद रखिए दोस्तों कि अपने घर के आसपास पानी जमा होने बिल्कुल भी ना दें। मच्छरदानी या मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम का उपयोग करें। आपातकालीन सामान तैयार रखें, जैसे कि टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, मोबाइल चार्जर या पावर बैंक फुल चार्ज रखें, फर्स्ट एड किट, पानी, पीने का पानी और फिर आवश्यक दवाइयां अपने साथ जरूर रखें। अगर आप वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो धीमी गति से चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दें। उन्हें तेज बहाव वाले पानी या नालों के पास जाने से बिल्कुल भी मना करें और जाने ना दें। भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े यानी कि भीगे कपड़े बदल लें और खुद को तौलिए से अच्छी तरह से साफ कर लें। भारी बारिश के समय सतर्कता और स्वच्छता और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप इस बारिश के मौसम में अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखेंगे। चलिए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, जिसे हमने लिया है ओ माय गॉड 2 फिल्म से।

तो दोस्तों ओह माय गॉड फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्टे डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरोट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। उपराष्ट्रपति सीवी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नए अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस की रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। यह रेलगाड़ी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह

2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस पोस्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकाने में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की भी संकल्प लिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़े कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने में सहयोग की अपील करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हेवियर एडवर्डो मार्टिन आज वर्सेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल भारत पहुंच रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2,300 ग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सर्वोस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संपन्न परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। वे विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्तीय सुशासन, वित्तीय संवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेटिव

0: इंडिया माईगोव पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता को माईगोव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूकी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी बन गई है। फुटबॉल विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agamaan, has successfully reached orbit after completing its first burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capacity. Developed under Mission Agamaan, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features three solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call after India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, successfully reached its orbit. Mr. Modi said, "Successful launch of vehicle Vikram 1 under Mission Agamaan is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector." Mr. Modi also expressed happiness that the Skyroot team comprises mostly young professionals. The Prime Minister also invited team Vikram 1 to meet him. Defence Minister Rajnath Singh has said that for India, zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Speaking at the forces' first conclave in New Delhi today, Mr. Singh said that India will strike terrorists not only at its doorstep but if necessary by entering their hideouts. He added that the entire world witnessed this during Operation Sindoor and it was a remarkable example of technological warfare. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today virtually flagged off the new Ramnagar-Dehradun Express. This marks a new era of enhanced rail connectivity between Uttarakhand and Uttar Pradesh. The train will benefit tourists and wildlife enthusiasts visiting Jim Corbett National Park as well as devotees travelling to the temple near Ramnagar. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from Monday and continue till 13th of next month. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Juma Ganj in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. Activist Sonam Wangchuk has been taken to a government hospital for essential

0: medical care. Deputy Commissioner of Police of New Delhi, Sachin Sharma, said Mr. Wangchuk has been shifted as part of the Delhi High Court and on expert medical advice due to his deteriorating health condition. Mr. Wangchuk has been on a fast at Jantar Mantar for several days. The Department of Posts, Ministry of Communications has launched the India Post mascot design contest on the innovative India MyGov platform to design the official mascot of India Post. The initiative aims to create a distinctive brand ambassador that reflects the organization's core values of trust, reliability, service and digital innovation. The contest is open to all and participants are required to submit one original mascot design, a suitable mascot name and a brief concept note through the MyGov platform. The contest will remain open till 15th of next month. The India Meteorological Department has issued red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Uttarakhand today. Nelson Mandela International Day is being observed globally today. The day commemorates the birth anniversary of Nelson Mandela and honors his lifelong contribution to humanity. The theme of this year, It's in Our Hands, highlights the role of individuals and communities in combating poverty and inequality. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: State cabinet hai mahaja state wa miyani rang health care pa choku rang the well-being, availability, affordability, le quality pa asan se rang acha mong innovative strategies he approve man kuwa cha. And ego state cabinet pa Arunachal Pradesh na health care pa rang set social protection le miyani rang asan rang umbrella initiative chief minister's comprehensive action for resilient, equitable le healthy state CM cares pa lucy wa cha. Because CM cares can go to CMAY, CM organ transplant services, CM health emergency life protection services, CM free chemotherapy services, CM social security scheme, wrong seat area. Cabinet, Mission Suraksha, State Unified Response Against Drugs, Substance Harm and Addiction, Pamin, Lucifer. And because state can go comprehensive health care, essential drug, Tamlapa. Rook Ramrako statewide integrated health camp Ayushman Arogya Shivir Paming Lucid Ram approval Kowaja Amajak Joto Kwega. State Cabinet Mamaja District Headquarter Township Lam DC ADC SDO Headquarter Lam Connectivity Pa Sansi Ramla Capital Complex Wa Decongestion Lambe Sansi Ram Phase 2 Chief Minister Comprehensive State Road Development Plan CMCSRDP. आज अपनी चार अपाले रोक रंबन बले कुटी मुन पर जो अप्रूव कन को एका अने को CM CSRDP Phase 2 पर Phase 1 सक्सेस को थमला मा 2019 पर मा 2024 पर को चाहे सेल रोक कुई वने 2.58 कुटी कोता खन को रोक रोक वने मीट लंबले दो लोग है वन वाजो CM मा Phase 1 को रोक रोक वने कामेता मोता न्यारा रो वाजो And the Kaparam Kanko, Leto Longwan Rang CM Comprehensive State Rural Road Development Program, CMCSRRDP. Hajat Nikutin Munpamin approved when Kuwajang Amaja Joja Tubega. Melani Nong Eding Mamaja, Harut Batang Rang, Depicha Juku, Kope, Kamuka, Hitong Sokan Vaja. Nala Hadam Tehina, Kampa Jesu Raman Joto Kuwaja. And the Koyamelema Hadam Tehima Rusab Junko Fan Pakuwaja. अरे को डेपी मूली हाँ डांटे हैं माँ अरे काम करांग जैसे भी बजाओ लोग आए का आम जाचो जेटु बेगा अरे को वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हैं माँ चचो माँ हारुट वाटंग रंग मत्तो ताई का पच्चान बजाओ वो ने का आमा चोटो को डंपो एमएलए माँ काम पूरा ले पंचायत मेंबर से ना काम पर जैसो ग्राम में चोटो को बाजा अस्पताल बाप्टिस्ट एसोसिएशन है ममजा ज्ञाती तक्का जोनल जनरल हॉस्पिटल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट वा ब्लड सेंटर है डमना रूप लामा हेको डोनेशन कैम कौन टाको रूप लामा लोग यूनिट है बा कौन सी बाजा अधिकारी को वन ची यूनिट बा ए पॉजिटिव वन ची यूनिट बा बी पॉजिटिव सी वन प्ली बा ओ पॉजिटिव लेवल नी यूनिट बा ए बी पॉजिटिव है डम बाजा मामजा चोटो गोएगा सी फाइव माउंटेन डिविजन मेजर जनरल अमित नौटियाल बा कचा मेजर बॉब खाटिंग मेमोरियल म्यूजियम को ताकों खान बा एनजीओ स्लेन्या वेटिंग है नम कंप्यूटर सेटले ट्रेडिशनल बॉम खाटे चोको बाजा अधिक जीओसी है मा इंडियन आर्मी है जाकरी नम तोंगले पंगलुलु अदंग थांबा लोकल हासों बा न्यावे कल्चर ले इंक्लूसिव डेवलपमेंट है नम इन चान बजा वन की नम चोटो को बाजा अधिक टाउन डिस्ट्रिक्ट खन नम सदभावना खन को काम मो जन जन है नम इन चोटो को बाजा डिप्यूटी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हॉल को नाबार्ड थे लोक ली वन बंगाल लॉ फाउंडेशन रामो बमानी बाजा नाबार्ड थे मा रूरल लिविंग परलोंग सेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंक्लूजन ले कम्युनिटी ले डेवलपमेंट हुआ राम चोको इका लोक ली नारे पा बंगा रख पा बजा मानी एका अधिकार प्रोग्राम को डिप्यूटी कमिश्नर मा नाबार्ड थे एनुअल रिपोर्ट पमेन लुसेट को बाजा अधिको एक पेर माह के नाम के बिन खान को स्टार अनिस बापू के में खेल बाजा यह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी है मापापुम परे ले लोहित डिस्ट्रिक्ट नंग ठेचा रामोग रख फाटन को रंगतंग लिए ले रंगतंग मोंग एपाद जोंगा मा जोंगा है का अधिको आईएमडी है मा ले को वेस्ट कमेंग ईस्ट कमेंग कुरुं कुमे पाके किसाम ईस्ट सीएम तीरा पे चानन डिस्ट्रिक्ट ना ओरेंज अलर्ट पमेलू से को जो रहेगा वेस्ट इंडीज के अजट क्रिकेट लेजेंड सर गारफील्ड सोबर पर रोक सप्पा एक रप्पा को जोर रिच होने का अनिकोरे क्रिकेट लूम टे रिक पर ते छा डैनियल मचोटो को बाजा अनिकोरे खेन को अजट टू एन ऑलराउंडर सोबर मा रोक खु वन रम तेज को हाजर सेट नले रोक रम बनी रन वन वाले रोकने वाले रोक सेंचुरीज ले रोक रम हाफ सेंचुरीज वाट बाजा आधा एक पर मार्च जंग 1954 ले अप्रैल जंग 1974 रप्पा टंग को वाट बाजा अरे डफिक ने मा वाट टेले बॉल पट्टी पर टेस्ट क्रिकेट ना चार्ली नाले रोग रमन बंगा विकेट कब बाजो अरे का सोबर पर 1968 रंपा को नॉटिंगहम शायर ने वा डेमोर्गन डमना डोंटा को फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना ओवर टेक को बने रोग सिक्स वाट टे कबंग ट्वेल डाउन बाजो गाम जो चोटो को एका जाना हम टेक खबर तो को जो लाठो मंगता
3: अरे खबंग से

0: नमस्कार दोस्तों, नोक्टे डायरेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।
1: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव,

दोस्तों आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सच्ची दोस्ती किसी पहचान की मोहताज होती ही नहीं है। दिल से बने रिश्तों की कोई उम्र भी नहीं होती है। जो हर हाल में साथ निभाए वही दोस्ती सबसे ज्यादा खास होती है। बता दो आपको कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म के गीत के बाद इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को मैंने प्यार किया फिल्म से।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: सुपीरियर हैंडलिंग, स्टाइलिश लुक, एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ब्रेजा।

श्रोता, जलेबी फिल्म के गीत के बाद ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, निराश आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए इस बार आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
3: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
2: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
3: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
2: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
3: तो अब

0: हटाइए वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ वार्ड चमकाओ IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का हसीन दिलरुबा फिल्म से नवराज हंस, निकिता गांधी और अमित त्रिवेदी की आवाजों में।

0: श्रोता सनम तेरी कसम फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दें आपको कि कार्यक्रम शाम की महफिल यही समाप्त होती है। बने रहे इसी तरह से हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप, पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को मिशन मजनू फिल्म से।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

Attention! Pari hydropower station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, तीन पत्ती फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदि दैनिक न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आइए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम बातें करेंगे हम सभी की चहेती ड्रीम गर्ल के बारे में। जी हाँ, हेमा मालिनी के बारे में। दोस्तों, हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती जब गर्भवती थी तब उन्हें पता नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन वे बेटी होने को लेकर इतनी निश्चिंत थी कि उन्होंने पहले ही नाम सोच लिया था हेमा मालिनी। इतना ही नहीं, माँ जया ने गर्भावस्था के दौरान अपने शयन कक्ष में दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी के अनेक चित्र लगा रखे थे। वे स्वयं अच्छी नर्तकी बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं सकी। अपनी बेटी को जया सर्वोत्तम नर्तकी बनाने पर आमादा थी और यह उन्होंने कर भी दिखाया। हेमा मालिनी पढ़ाई में होशियार थी, इतिहास उनका सबसे पसंदीदा विषय रहा। हेमा अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दे पाई क्योंकि उन्हें लगातार अभिनय के प्रस्ताव मिल रहे थे। मात्र 14 साल की उम्र में हेमा के घर के दरवाजे पर फिल्म निर्माता दस्तक देने लगे थे। निर्माता निर्देशक श्रीधर ने फोटो सेशन के लिए हेमा को साड़ी पहनाई, और साड़ी पता है क्यों दोस्तों, साड़ी इसलिए कि वे अपनी उम्र से बड़ी दिखाई दे सके। हिंदी फिल्मों में हेमा मालिनी को पहला अवसर सपनों का सौदागर 1968 में मिला। हेमा के हीरो सौमेन राज कपूर थे जो उम्र के मामले में हेमा से बहुत बड़े थे, और राज कपूर ने तब कहा था कि एक दिन यह लड़की सिनेमा की बहुत बड़ी स्टार बनेगी, और राज साहब की भविष्यवाणी को हेमा ने सच कर दिखाया। दोस्तों, सीता और गीता आपने सुना ही होगा। 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाए। इस फिल्म की शानदार कामयाबी ने हेमा को अग्रिम पंक्ति की नायिकाओं में शामिल कर दिया था।

दोस्तों, अभी आपने आनंद लिया इस गीत का सुपरहिट मूवी सीता और गीता फिल्म से। 1970 में रिलीज हुई जॉनी मेरा नाम से हेमा मालिनी को गंभीरता से लिया जाने लगा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अपने करियर के आरंभ में ही हेमा ने धर्मेंद्र के साथ तुम हंसी मैं जवा, सराफत, नया जमाना जैसी कुछ फिल्में की। ये फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। आगे चलकर इस जोड़ी ने हिंदी सिने इतिहास की कई सफल फिल्में दी और बॉलीवुड की सर्वाधिक कामयाब जोड़ी में से एक है। दोस्तों, हेमा के सौंदर्य को देख उन्हें ड्रीम गर्ल पुकारा जाने लगा। इसी नाम की एक फिल्म हेमा की मां ने भी बनाई थी। पर फिलहाल चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं जॉनी मेरा।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: डायनामिक परफॉर्मेंस, स्लीक डिजाइन, एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 कम्स विद अ माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर। स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, नेक्स्ट जेन के सीरीज 1.0 लीटर ड्यूल जेट, ड्यूल 50 इंजन एंड स्पेशियस इंटीरियर्स।
3: गेट अट्रैक्टिव ऑफर्स अप टू ₹67,500। ऑफर टिल स्टॉक लास्ट्स। विजिट योर नियरेस्ट मारुति डीलरशिप टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: श्रोता, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आप सभी को कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का। हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर, और इस कार्यक्रम के दौरान आज मैं बता रही हूं आपको हेमा मालिनी जी के बारे में। दोस्तों, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता है। हेमा मालिनी ने दिल आशना है नाम की फिल्म निर्देशित की थी और शाहरुख खान को इस फिल्म के जरिए उन्होंने ही अवसर दिया। 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया। अभिनेत्री होने के अलावा हेमा एक कुशल नृत्यांगना भी हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी में उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया और देश विदेश में कई स्टेज शो पेश किए। फिल्मफेयर अवार्ड्स की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में हेमा मालिनी का नाम 11 बार नामांकित हुआ, लेकिन उन्हें केवल एक बार ही सीता और गीता फिल्म के लिए यह पुरस्कार मिला।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोता, सांसद बनकर चुनाव प्रचार के लिए जहां भी गई हेमा मालिनी, श्रोताओं ने उनसे फिल्म शोले की बसंती की संवाद सुनने का हमेशा आग्रह किया। दोस्तों, इसी गीत के साथ ही, यानी कि जुगनू फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर तुरंत निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।

0: दोस्तों, निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के खिदमत में। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम माई स्टेज माई प्राइड की ओर।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
2: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
2: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
2: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैरत। दोस्तों, हर इंसान को अपने घर, गांव, प्रदेश या देश पर नाज होता है। वे उनसे इमोशनली अटैच्ड होता है और इस अटैचमेंट के लिए कोई वजह की जरूरत भी नहीं होती। बस इतना काफी है कि वह आपका गांव है, आपका प्रदेश है। लेकिन जब वही गांव या प्रदेश या देश कुछ बहुत अच्छा कर जाए, कुछ बड़ा अचीव कर ले, तो ये अटैचमेंट गर्व या प्राइड के रूप ले लेता है। तब ये फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरज की पहली किरण जिस सरजमी को अपनी रोशनी से जगाते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा प्रदेश भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा ऐसी कई चीजों में, ऐसी जगहों में अपना नाम विश्व इतिहास में दर्ज किया है, जो हर अरुणाचली को सर उठा के, सीना ठान के चलने का हकदार बनाता है, जिसके लिए हम अपने प्रदेश पर सदैव गर्व होते हैं। ऐसा ही एक खेल और खिलाड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्होंने अरुणाचल के नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर लाकर हमें गौरवान्वित किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने प्रदेश के इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मिस हिलांग याजिक। हिलांग याजिक ने बॉडी बिल्डिंग

0: के मॉडल पिजिक कैटेगरी में 2025 को भूटान में आयोजित 15 साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा ऊंचा लहराया है और अरुणाचल का नाम और भी ऊंचा। वैसे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स उतना हमारे यहाँ चर्चा में नहीं है, कई लोग इस बारे में जानते भी नहीं है। ऐसे में हिलांग याजिक ने कैसे और क्यों इस स्पोर्ट्स को चुना, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
1: सो फर्स्ट ऐसे कुछ प्लान नहीं था, बट जैसे हम एक डांसर भी है, सो हम जुम्बा क्लासेस वगैरह कराता था। सो जो जिम में हम जुम्बा क्लास करा था, तब हम क्लास 10 था, आई थिंक 10 और 11 में भी। तो उस समय में जिम का ओनर, तो भैया ने बोला कि स्टेट में पार्टिसिपेट मतलब करके देखो, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता है हल्के। तो सेकेंड टाइम था वो स्टेट लेवल मेरे लिए, तो पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, एंड फर्स्ट टाइम में हमको सेकेंड मिला। सो बहुत
0: स्टेट में
1: सेकेंड मिला, तो बहुत समय तक पता नहीं था कि इससे आगे भी जाना है बोल के। एंड हम लोग एक्चुअली बोल से वुमेन कैटेगरी में बोल से इतना पॉपुलर तो नहीं था, मेन लोग का तो होता था, बहुत कॉम्पिटिशन होते रहता था। तो धीरे धीरे हम किया है, फोर्थ टाइम्स हम विनर रह चुका है अभी स्टेट में। हाँ, तो कंटिन्यू स्टेट को तो कंटिन्यू किया है, बट बाहर एक दो बार खेला था, बट उसमें भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला और इतना आइडिया, उसमें भी इतना आइडिया नॉलेज नहीं मिला हमको। बट 2021 आई थिंक उसमें हम फर्स्ट टाइम सिक्किम में नेशनल्स खेला था, फेडरेशन कप, बहुत प्रेस्टिजियस स्टेज है वो फेडरेशन कप, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें पार्टिसिपेट करके ही हमको पता चला है कि कितना लेवल हाई है बाहर कंपटीशन पर। उसमें हम लोग का स्टेट में तो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता था वो, तो इसलिए हम भी शायद से इतना आगे नहीं किया होगा। बट नेशनल लेवल में जाके हम देखा है, तो वहां में कुछ अलग ही है वो लोग के लिए, क्रेज जो अलग है
0: स्पोर्ट्स को लेके। हाँ,
1: एंड वो लोग, हम लोग का जो कैटेगरी है मॉडल फिजिक है, तो उसमें ऐसे भी नहीं है कि वो लोग इतना बल्कि ह्यूज है, ऐसे भी नहीं है। वो लोग को देख के हमको मजा आ रहा है, आई मीन इतना अच्छा बदन, और वो लोग इतना ये चीज को लेकर इतना प्राउड भी है, तो हम उसको देख के फील हुआ है कि कुछ कर सकते हैं। हाँ,
0: कोई एम या टारगेट नहीं था, बस किसी के कहने पे स्टेज पे उतरी, अच्छा लगा, फिर आगे बढ़ती गई। और दोस्तों, ये आगे बढ़ना गाड़ी में बैठ के जाना तो है नहीं, इसके लिए हाथ पांव तोड़ने पड़ते हैं।
1: तो हम लोग का फर्स्ट फेज वो होता है कि हम लोग एक क्वालिटी गेन करना पड़ता है, मसल गेन कर ले, कुछ वेट तक हम लोग गेन कर लेगा, उसके बाद ड्रॉप करना पड़ता है। तो ड्रॉप वाला सेशन जो सबसे तकलीफ होता है हम लोग के लिए, दो तीन महीना तो हम लोग एक्सट्रीम डाइट में चला जाते हैं, बट वो दो तीन महीना के लिए हम लोग को एक साल से प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब हेल्दी खा के। आप ऐसे नहीं कि पूरा साल में मर्जी खा लिया और दो तीन महीना में आप स्ट्रिक्टली बैठ गया, ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो जितना हम लोग
0: खाया है,
1: जंक फूड खाया है, जो भी खाया है, वो पूरा वो उस समय में असर नहीं करेगा, बट बाद में वो पूरा जमा होकर रह जाता है, उसके बाद हम लोग को ड्रॉप करने में तकलीफ हो जाता है। नॉर्मली जब वेट ड्रॉप करते हैं बिल्डर लोग, इतना कार्डियो नहीं करते, मसल लॉस हो जाता है, क्वालिटी मसल जो है ना वो लॉस हो जाता है, लेकिन मेरा पार्ट में हो गया था, हमको मसल ही लॉस करना है, अभी फैट्स तो नहीं है बॉडी में, मसल लॉस करना है, तो उसमें हमको बहुत तकलीफ, मेरा बहुत बार हम फिजियोथेरेपी भी, हम एवरी कंपटीशन में जाते ही था, पैर मेरा कुछ हो जाएगा, शोल्डर, पैर तो लेग्स तो होते रहता था रनिंग का वजह से, हम इतना रनिंग करता था, हम सुबह एक घंटा रनिंग करता था, इवनिंग में एक घंटा रनिंग करता था, और नहीं हो रहा है बोलने से एक घंटा रनिंग, एक घंटा स्टेयर मास्टर सीढ़ी वाला होता है ना वो करता था, शाम में करता था, हम मेरा क्लाइंट है, हम पर्सनल क्लाइंट लेते हैं, वो करना, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था क्लास कर, अभी पढ़ाई अभी सेल्फ स्टडी कर रहे, बट स्टिल दिन में सेल्फ स्टडी कर रहे, मॉर्निंग में क्लाइंट ले रहा, अपना ट्रेनिंग, कार्डियो, ऐसा करके मेरे लिए बहुत, और फिर हम अभी अकेला रहते हैं तो फिर अपना खाना भी खुद बनाना है, तो वो प्रोसेस जो हम यूनिवर्सिटी जाने से भी, हम सुबह क्लासेस वगैरह करा के हम टिफिन लेके जाता था और हम बस से जाता था, क्योंकि हमको ज्यादा सोने नहीं मिलता, तो हम बस से सो के जाता था, तो ऐसा होता था। ट्रेनिंग उस समय यूनिवर्सिटी समय बहुत टफ था, उसके बाद हम सोचे कि यूनिवर्सिटी खत्म होकर थोड़ा आसान हो जाएगा, यूनिवर्सिटी खत्म हो, एक साल के पैर है, फिर भी काम जितना आप सोचते अभी आराम है, आराम नहीं होता है वो।
0: आपका भी अपना एक कोच अलग से रहता होगा?
1: हाँ, मेरा भी कोच है, मेरा कोच ओडिशा का है। तो अभी जब सब इंटरनेशनल और फर्स्ट नेशनल जब मेडल जीता है, तब से 2024 से अभी तक वही कोच है,
0: तो वो यही है।
1: नहीं नहीं, ओडिशा में हम लोग ऑनलाइन करते हैं, आई मीन वो ऐसा ऑनलाइन वीडियो वाला नहीं, बट वो हमको डाइट चार्ट वगैरह, उसके बाद वर्कआउट्स वगैरह कर देते, यहाँ का जितना इंटेंसिटी में करना है वो हम डिसाइड करते हैं कितना करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी इतना हम ट्रेनिंग कर लिया, हम भी कोच है एक, और हम इतना ट्रेनिंग कर लिया कि हमको अपना बॉडी को पता हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में है वो कोच को पता नहीं चल रहा होता है ना, वो तो वहां से भेज देता है, तो हमको वीडियो में तो नहीं देख रहे प्रॉपर, लेकिन हम भी अपना बॉडी को इसलिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तो हम अपना हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कार्डियो हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि मेरा ड्रॉप, वेट ड्रॉप होना बहुत मुश्किल है।
0: कोई भी काम में एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग

0: या प्रैक्टिस अनिवार्य होता है, जिसके बिना कुछ भी अचीव करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन टॉप तक पहुंचने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग रहना भी बहुत जरूरी है, और रास्ते में आए पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस को भी संभालना उतना ही जरूरी है।
1: सबसे पहले तो विल है, विल और डिसिप्लिन तो नॉन नेगोशिएबल है, वो दारिक होना ही पड़ेगा। एंड बॉडी बिल्डिंग ऐसा वाला स्पोर्ट है कि आपको सबसे पहले अपने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि सोसाइटी आपको कुछ भी बोल सकते हैं, सोसाइटी भी बोल के नहीं है, बट ऑनलाइन ट्रोलिंग तो अलग लेवल है। और ऐसे है कि आप ऑनलाइन, आप सोशल मीडिया में नहीं रह के भी कर सकते। बॉडी बिल्डिंग ऐसा लाइक क्या फर्स्ट टाइम में जाएगा जीतेगा, ऐसे हो भी सकता है, बट नहीं होने का चांसेस ज्यादा है। तो वो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ट्रेनिंग। और ऐसे कि ये ना बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है, जैसे हम आगे भी आपको बोला बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है। आप आदमी ना बहुत होता है, एक दो महीना में भी आके बॉडी बन जाएगा सोचने वाला भी होता है ना, तो वो माइंडसेट को चेंज करना। आप सोच के जाना है कि ये बहुत लंबा गेम है, आप अभी से शुरू करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, फ्यूचर में इसका मिलेगा ना, अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे सोच के जाना पड़ेगा।
0: एक कहानी है जिससे एक कहावत भी है, अंगूर खट्टा है। खुद अपना बेस्ट नहीं देके कई बार हम हालात को ब्लेम करते हैं। कोई अगर आपकी मदद भी करना चाहे तो उसे पता तो चले कि आप में कोई खास बात, मदद करने लायक कुछ है भी या नहीं, आप में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है भी या नहीं। इसीलिए अपने आप को तराशने का काम करो, मेहनत इतना करो कि कोई भी आपके हुनर को पंख देने के लिए आगे आ जाए।
1: बॉडी बिल्डिंग अगर आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट करेगा, उनसे बहुत विलिंग विल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन आप सोच लेना पड़ेगा कि टफ है रास्ता ना, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। और हम मेरा जैसे वाला को ऐसा बोलना चाहिए, मेरा जैसे इन द सेंस की जिसका फाइनेंशियल जो पेरेंट्स स्टेबल नहीं है, हम बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे। और हम हमेशा, हम अपना लास्ट एक स्पीच था उसमें भी हम बोला था कि ऐसा बहुत सारा होता है जो जिसका पेरेंट्स प्रिविलेज है, वो लोग को चाहे कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में ना, नहीं करने से भी वो लोग के लिए है पेरेंट्स पीछे कुछ कर देने के लिए। लेकिन हम लोग का जैसा वाला लोग जो ज्यादातर ऐसे होते कि थोड़ा विक्टिम प्ले करने के लिए करते हैं, ऐसा होता है। हम भी किया ऐसे तो नहीं, हम भी नहीं किया, मेरा पेरेंट्स ऐसा उनसे दिखता वैसा उनसे दिखता, ऐसे हम भी बहुत सोचे। बट हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि हम लोग के लिए मुश्किल है रास्ता, जो ना रास्ता मुश्किल है, बट हम जैसे बोले कि अच्छा इंसान भी है। अगर आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकते है ना, यहाँ अच्छा इंसान भी है और आपको भी अच्छा होना पड़ेगा। जो फर्स्ट पुश होता है ना, वो हमेशा आपको कोई ना कोई कर ही देगा आपको पोटेंशियल को देख के। लेकिन आप में पोटेंशियल होना पड़ेगा, आप में डिसिप्लिन दूसरा को दिखना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं है कि आप पोटेंशियल है, डिसिप्लिन है, आप चुपचाप बेहतर है और वो आपको खुद आके हेल्प करेगा, ऐसे भी नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा वॉइस आउट होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमको हेल्प चाहिए बोल के ना, हमको ये स्टेज में हम चाहते हैं कि हमको लगता है कि हम कर सकेगा, तब आपको जाके हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे ही होके हुआ है। और
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, तो आइए सुनते हैं हमारे राज्य के इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मिस हिलांग याजिक आज के यंग जनरेशन को और समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं।
1: तो हमको लगता है कि यहाँ का स्पेशली लड़की लोगों, लड़का लोगों ना, मेरे एज का या फिर अभी जो यंग जनरेशन बड़ा हो रहा है, अपना स्किल में मेहनत करो, अपना टैलेंट में फोकस करो। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। इतना पढ़ाई वाला लोग भी अभी बहुत कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं होके बैठ रहे, तो ना सबके लिए वो मौका, सबको मौका नहीं मिलेगा आप बहुत टैलेंटेड होने से भी। तो हमेशा हमको लगता है कि अपने लिए ऑप्शन होना जरूरी है, और थोड़ा अच्छा इंसान हमको लगता है, काइंड और हम्बल होना हमको जरूरी है लगता है आजकल के जमाना में, क्योंकि आजकल इतना झगड़ा होते रहते हैं देखने से ना, थोड़ा सा बोलने से भी जवाब देने झगड़ा होते रहते हैं, मतलब कहीं भी सुनने से ना, तो एक दूसरे में थोड़ा काइंड, थोड़ा हम्बलनेस ना, एक अगर पार्टी थोड़ा गुस्सा है तो आप थोड़ा अच्छा से शांत से जवाब दे दो एक बार के लिए ना, क्या पता उसका क्या दिन चल रहा होगा ना। हम ये सब में बहुत बिलीव करते हैं, हम इतना झगड़ा हो रहा, हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो हमको दूसरा को देखने से लेकिन लगते है कि वो अगर गुस्सा मूड में बोला है तो आप एक बार के लिए हम्बल होके अच्छा से आंसर कर दो। तो हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, थोड़ा हम्बल एंड काइंड होना जरूरी है।
0: दोस्तों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम माई स्टेट माई प्राइड यही

0: हिमाचल का गौरव है। यस माई स्टेट माई प्राइड हिलांगिया जी। अगले हफ्ते एक और नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त हमने पेश किया है इस गीत को इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से, बियांका गोम्स और क्लिंटन सरेजो की आवाजों में।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता साहिबा, फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर।

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि अभी आप सुन पाएंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे अरुणाचल न्यूज रील।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसके तुरंत बाद आपने सुना अरुणाचल न्यूज रील। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई श्रोता, अब समय हो चला है कुछ पाश्चात्य संगीतों का, आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: And that brings us to the end of today's program. Thank you for listening and being with us. This was Western Music Program, only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों, पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत में आप सभी का स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी आपको कि पहला गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कर्ज फिल्म से।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
3: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
2: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
3: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
2: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
3: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
2: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
3: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का ज्वलती फिल्म से लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाजों में।

0: श्रोता, आराधना फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। वेल, बता दूं आपको कि स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के देरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता बीसी शर्मा के साथ मुझे, यानी कि आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।
1: पत्रिका चित्र भारती।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं, जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान

0: विजया जी ने बड़ी काबिलियत के साथ किया।
1: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में

0: में गड़बड़ ना कीजिएगा।
1: सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
2: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: विद्या की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और उसका सही सगन विचार करें।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
2: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पेस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
6: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
2: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
7: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
2: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
7: दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था।

0: मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
1: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
2: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
1: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
3: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
1: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16

मैथिली ले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भाग्यराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक।

महेंद्र की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत

बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारतीय राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नामेदास और रूपाश्री वड़कड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथाकाडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद

0: आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जाँच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र आडापा विजय अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। ये वार्षिक यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह में से एक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 शुरू होगा। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश का कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। ईरान ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित किया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर लड़ाई तेज। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु और 60 घायल। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। ईरान के कानून और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने आज घोषणा की है कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया है और अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरानी मीडिया के अनुसार गरीबाबादी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत में लगे हुए थे, लेकिन अमेरिका ने कथित तौर पर आक्रामक कार्रवाई करके समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने व्यावहारिक रूप से अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है और उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं ईरान ने भी इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों को निलंबित करके जवाब दिया है। यह घोषणा हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के बीच हुई है। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिनों में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई हैं। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना

0: बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 लोग घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए।
0: एक गोदाम रूस के तांबूव ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोव शहर में और दूसरा मॉस्को के निकट इलेक्ट्रोस्टल शहर में है। कोटोव में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इन हमलों में ड्रोन उत्पादन और नौवहन उपकरण के लिए स्वीकृत घटकों की आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाली 2 महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक तेल प्रतिष्ठान पर भी हमला किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणाली से 19 क्षेत्रों में यूक्रेन के 379 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। विश्व दर्पण के लिए मैं भवतारिणी।
1: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच हुए इन हमलों से देश के बिजली तथा जल शोधन ढांचे के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी।
4: ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अपने ऑपरेशन नस्त्र 2 के 18वें चरण के तहत कुवैत स्थित अरिफजान ग्राउंड फोर्सेज सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि इस हमले में वहां तैनात कई अमरीकी सैनिक मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया कि उसने की अली अल सलीम एयरबेस पर रडार प्रतिष्ठान को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह स्थित अमेरिकी नौसेना के ईंधन सहायता केंद्र और संचार केंद्र पर ड्रोन तथा मिसाइल हमले किए। इन हमलों का असर आवश्यक सेवाओं पर भी पड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: बलूचिस्तान में मानवाधिकार समूह बलूच वॉइस फॉर जस्टिस BVJ के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर 2 और नागरिकों को जबरन गायब कर दिया है। BVJ ने बताया कि बलूच छात्र मोर्चा के नेता फजल बलूच को उनके घर से, जबकि अजरबैजान में पढ़ाई कर रहे छात्र शहाब बलूच को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बलूचिस्तान लौटने के बाद कथित तौर पर हिरासत में ले लिया गया। BVJ ने पाकिस्तान अधिकारियों से उनके ठिकानों का खुलासा करने का आग्रह किया और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से उनकी सुरक्षित रिहाई और जवाबदेही के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित और निष्पक्ष तथा गहन जांच की मांग की। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवाद पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में भी घुसकर उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: वाणिज्य

मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्यासा हकान से राजधानी टलिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एस्टोनिया सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्तोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्वसनीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर अर्दुआदो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और उसी दिन हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार देर रात 2:30 बजे से अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित किया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर लड़ाई तेज। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु और 60 घायल। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च। और फीफा फुटबॉल विश्व कप टीम में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।